0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: श्रृंगार गीत सुनिए गोपाल भगत की आवाज में।
5: देखै चलो भोला रो श्रृंगार हो फूलो

0: वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: गंगा गीत सुनिए गोपाल भगत की आवाज में।

आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे गोपाल भगत, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म सैयारा का गीत फहीम अब्दुल्ला की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है इरशाद कामिल, फहीम अब्दुल्ला और अरसलन निजामी ने।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फिल्म का नाम है धुरंधर। गीत के बोल लिखे हैं शहद कामिल ने, धुन बनाई है शश्वत सचदेव ने और गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए फिल्म परम सुंदरी से। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन बनाई है सचिन जिगर ने और आवाज सोनू निगम और कृष्ण कली साहा की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म नाम का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नई फिल्मों से संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता। दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और कुछ सुर सिर्फ गाए नहीं जाते, अंदर रूह में उतर आते हैं। आप सभी श्रोताओं को दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम गुलदस्ता में, जहां हर गीत एक दुआ की तरह उतरता है और हर सुर किसी रूहानी एहसास की तरह दिल को छू जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे फिल्मी नगमे जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल और रूह तक का सफर तय करते हैं, जैसे कोई हल्की सी हवा में बसी इबादत की खुशबू हो, या जैसे कोई अधूरी मोहब्बत अपने पूरे एहसास के साथ फिर से जिंदा उठे। यहां हर गीत एक फूल है दोस्तों, और हर फूल में छुपी है कोई ना कोई कहानी, कभी यादों की, कभी वफा की, और कभी बस खामोश मोहब्बत की। तो आइए आज के इस संगीत की दुनिया को शुरू करते हैं, जहां सुर नहीं बल्कि एहसास बोलते हैं और खामोशी में भी अपना गीत सुनाते हैं। आप सभी सुनने वालों को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती, बस कोई शख्स जिंदगी की वजह बन जाता है। जहां हर धड़कन किसी नाम को पुकारती है, हर खामोशी में किसी की मौजूदगी

महसूस होती है, और हर एहसास बस यही कहता है कि अब जीने की वजह सिर्फ तुम हो। दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से समझी जाती है। जैसे कोई रूह किसी दूसरी रूह से जुड़कर अपनी अधूरी कहानी को पूरी कर रहा हो। ये गीत नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान खुद को भूलकर किसी और में जीने लगता है। तो आइए इस रूहानी और दिल को छू जाने वाले नगमे के साथ हम भी कुछ पल के लिए अपने दिल को उसके हवाले करते हैं।

दोस्तों, कभी कभी दिल किसी इंतजार में खुद को सजा लेता है और हर धड़कन बस एक ही नाम को पुकारती है। ऐसा ही एक बेहद और खूबसूरत दिल को छू जाने वाला गीत अब आप सुनने वाले हैं, जहां मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि सजने संवरने की एक इबादत बन जाती है। इस गीत में एक मासूम सी चाहत है, एक मीठा सा इंतजार है और एक ऐसा रोमांस है जो आंखों से नहीं बल्कि दिल की खामोशी से बयां होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की अपने सजने संवरने में भी सिर्फ उसी एक पल की तैयारी कर रही हो जब उसका सजना उसकी नजरों के सामने आ जाएगा। हर लफ्ज में मोहब्बत की नरमी है, हर सुर में एक हल्की सी शरारत है और पूरे गीत में बस एक ही एहसास गूंजता है, और वो ये कि सजना के लिए सजना भी एक इबादत है। तो आइए इस प्यारे से नगमे के साथ हम भी उस मीठे से इंतजार में खो जाएं, जहां प्यार खुद को सजाता है सिर्फ अपने सजना के लिए।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती। वो तो बस एक खामोश इशारा होती है जो रूह तक उतर जाती है। अगले गीत में जो बातें हैं वो प्रेम किसी पर्दे में नहीं छुपता, बल्कि एक ऐसी रूहानी पुकार बन जाता है जो दिल को उसकी ही धड़कनों में वापस बुला लेता है। ऐसा लगता है जैसे दो रूहें सारी दूरियों को मिटाकर एक ही सुकून के आगोश में खो जाना चाहती हैं। जैसे कोई रूठा हुआ सा दिल अब और इंतजार नहीं कर सकता। जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इस गीत में प्यार भी है, थोड़ा सा ये गीत नटखट भी है, थोड़ा सा बेबाक भी और बहुत सारा रोमांटिक भी। यहां दिल ये कहता है कि अब और पर्दा कैसा सनम, बस आ जाओ और इस धड़कन को अपना सुकून बना लो।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं रहती, वो रूह की खामोश इबादत बन जाती है, जहां दिल की दुनिया धीरे धीरे सिमटकर बस एक ही नाम में खो जाती है और रूह बस उसी एक साए को अपना किबला बना लेती है। इस गीत में जो अब आप सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी दीवानगी है जो शोर नहीं करती, बस खामोशी से उतरकर इंसान को उसके ही वजूद से दूर लिए चली जाती है और मोहब्बत के बेहद करीब कर देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रेम कोई चाहत नहीं बल्कि एक रूहानी सफर हो, जहां इंसान खुद को खोकर ही खुद को पा लेता है। तो आइए इस गीत की नर्म रूहानी लहरों में कुछ पल के लिए हम भी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं।

0: श्रोताओं, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं रहती, वो एक खूबसूरत सा ख्वाब बन जाती है, एक खूबसूरत वादा बन जाती है जो हर लफ्ज में मुस्कुराता रहता है। प्रेम जहां किसी दूरी को नहीं मानता, यहां चाहत बस एक ही पुकार बन जाती है, आ जाओ और मेरे प्यार को अपना लो। ऐसा लगता है जैसे दिल अपने महबूब को बाहों में नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया में समेट लेना चाहता हो। हर लफ्ज में मीठी सी दीवानगी है, हर सुर में एक नर्म सी मोहब्बत की खुशबू है, और पूरा गीत जैसे कह रहा हो कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं बल्कि बांट देने की इबादत है। तो आइए इस रोमांटिक एहसास के साथ हम भी उस प्यार की महफिल में खो जाएं, जहां दिल दिल से कुछ यूं कह उठता है।
1: तो है प्यार तू गोरी भैया, तो बेवार तू, इसलिए तू इतना उदास, सुखे सुखे हूँ

दोस्तों, अब इस सुरीले सफर के आखिर में हम आ पहुंचे हैं उस मोड़ पर जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर दिल में उतर जाते हैं। गुलदस्ता कार्यक्रम के इस फिल्मी संगीत के महकते हुए गुलशन में हमने साथ साथ यादों के फूल चुने, कुछ हंसी के, कुछ जज्बात के और कुछ उन धुनों के जो सीधे रूह तक उतर जाते हैं। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में जहां हर गीत ने कहानी कही, हर धुन ने एक एहसास जगाया, हम यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, लेकिन संगीत की ये खुशबू आपके दिलों में हमेशा बनी रहेगी। तो आइए, विदा लेते हुए बस इतना ही कहें कि संगीत कभी खत्म नहीं होता, वो तो बस दिलों में सिमट जाता है। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया आपके प्यार और आपकी मौजूदगी के लिए। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम, नए गुलदस्ता के साथ, नए गीतों और नई यादों के साथ। दीजिए इजाजत मीनू को, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञानवाणी, प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिक की प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान रत्न का। श्रोताओं विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे रेलवे के जनक के रूप में जाने जाने वाले जॉर्ज स्टीफेंसन के प्रेरणादायी जीवन के बारे में। इनका जन्म 9 जून 1781 को वायलाम नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। स्टीफेंसन को विक्टोरियन युग में लगन और सुधार की प्रबल इच्छा का एक महान उदाहरण माना जाता था। उनके द्वारा चुना गया रेल गेज जिसे कभी कभी स्टीफेंसन गेज भी कहा जाता है रेल के लिए आधार था। स्टीफेंसन द्वारा शुरू किया गया रेल परिवहन 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी आविष्कारों में से एक और औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख घटक था। जॉर्ज और उनके बेटे रॉबर्ट की कंपनी रॉबर्ट स्टीफेंसन एंड कंपनी द्वारा निर्मित लोकोमोशन नंबर 1 पहला स्टीम लोकोमोटिव था जिसे 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे नामक सार्वजनिक रेल लाइन पर यात्रियों को ले जाया गया। जॉर्ज ने दुनिया की पहली सार्वजनिक अंतर शहरी रेलवे लाइन लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे का भी निर्माण किया जिसमें लोकोमोटिव का उपयोग किया गया था जो 1830 में खुली थी। स्टीफेंसन क्रांतिकारी परिवहन माध्यम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में थे। उन्होंने सड़क निर्माण पुल डिजाइन और लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक निर्माण की समस्याओं को हल किया। उन्होंने मिडलैंड्स में कई अन्य रेलवे का निर्माण किया और उन्होंने देश और विदेश में कई रेल परियोजनाओं पर सलाहकार के रूप में काम किया। इनके बचपन की बात करें तो इनका जन्म 9 जून 1781 को वायलाम नॉर्थम्बरलैंड में हुआ। वह रॉबर्ट और मेबल स्टीफेंसन के दूसरे बच्चे थे जिनमें से कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। रॉबर्ट वायलाम कोलियरी के पंपिंग इंजन में फायरमैन थे और बहुत कम वेतन कमाते थे इसलिए स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। 17 साल की उम्र में स्टीफेंसन पास के न्यूबर्न में वाटर रोपिट में इंजन मैन बन गए। जॉर्ज ने शिक्षा का महत्व समझा और पढ़ने लिखने और अंकगणित सीखने के लिए रात्रि विद्यालय में पढ़ने के लिए पैसे दिए। वो 18 साल की उम्र तक निरक्षर रहे। 1801 में उन्होंने पोर्टलैंड के दक्षिण में स्थित ब्लैक कैलर्टन कोलियरी में ब्रेकमैन के रूप में काम शुरू किया जहां वे खदान में वाइंडिंग गियर को नियंत्रित करते थे। 1802 में उन्होंने फ्रांसिस हेंडरसन से शादी की और न्यू कैसल के पूर्वी में विलिंगटन क्वे में रहने चले गए। यहां भी वे कॉटेज के कमरे में रहते थे और ब्रेकमैन के रूप में काम करते थे। जॉर्ज अपनी आय बढ़ाने के लिए जूते बनाते थे और घड़ियां ठीक करते थे। 1815 में खानों में खुली आग से होने वाले विस्फोटों से अवगत होकर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक ऐसे सुरक्षा दीपक पर प्रयोग करना शुरू किया जो गैसीय वातावरण में भी विस्फोट किए बिना जल सके। उसी समय प्रख्यात वैज्ञानिक और कॉर्निस निवासी हम्फ्री डेवी ने भी इस समस्या पर विचार कर रहे थे। वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के बावजूद जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रयोग और त्रुटि विधि से एक ऐसा दीपक विकसित किया जिसमें हवा छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती थी जिनसे दीपक की लपटें बाहर नहीं निकल पाती थी। डेवी द्वारा रॉयल सोसाइटी के समक्ष अपना डिजाइन प्रस्तुत करने से एक महीने पहले स्टीफेंसन ने किलिंगवर्थ कोलियरी में जाकर और ज्वलनशील गैसों के रिसाव से निकलने वाली एक दरार के सामने अपना लैंप रखकर 2 गवाहों के सामने उसका प्रदर्शन किया। दोनों डिजाइन भिन्न थे। डेवी के लैंप के चारों ओर जाली की स्क्रीन थी जबकि स्टीफेंसन के प्रोटोटाइप लैंप में एक छिद्रित प्लेट थी जिसमें कांच का एक सिलेंडर था। उस समय अपने आविष्कार के लिए डेवी को £2000 का पुरस्कार दिया गया था जबकि स्टीफेंसन पर डेवी से विचार चुराने का आरोप लगाया गया क्योंकि उन्हें एक योग्य वैज्ञानिक नहीं माना गया। हालांकि 1833 में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिति ने पाया कि सुरक्षा लैंप के आविष्कार में स्टीफेंसन का भी उतना ही अधिकार था। स्टीफेंसन लैंप का उपयोग लगभग विशेष रूप से उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में किया जाता था जबकि डेवी लैंप का उपयोग अन्य सभी स्थानों पर किया जाता था। अपनी पुस्तक जॉर्ज एंड रॉबर्ट स्टीफेंसन में लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल रोल्ट बताते हैं कि दोनों लैंपों की कार्यक्षमता के बारे में अलग अलग राय थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपना पहला लोकोमोटिव 1814 में डिजाइन किया। इसके बाद उन्होंने 16 से अधिक लोकोमोटिव्स को डिजाइन किया। स्टीफेंसन ने आदिम रेल पटरियों पर इंजन के वजन के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान कर लिया था। उन्होंने स्टीम स्प्रिंग यानी पिस्टन पर काम करने वाले भाप के दबाव का उपयोग करके लोकोमोटिव फ्रेम को सहारा देने के लिए प्रयोग किया। स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के लिए स्टीफेंसन ने गढ़ा हुआ लोहे की लचीली रेल पटरियों का उपयोग किया जिसे उन्होंने संतोषजनक पाया था। स्टीफेंसन को 1820 में 8 मील लंबी हिटन कोलियरी रेलवे के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने ढलानों पर गुरुत्वाकर्षण और समतल व ऊपर की ओर जाने वाले हिस्सों के लिए लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया। यह बिना पशु शक्ति के उपयोग वाली पहली रेलवे 1822 में खुली थी जिसका इस्तेमाल स्टीफेंसन ने पहले किलिंगवर्थ वैगनवे में किया। अन्य लोकोमोटिव में किल्बर नॉक और टून रेलवे के लिए द ड्यूक शामिल है। स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के लाइन के लिए लोकोमोटिव उपलब्ध कराने हेतु स्टीफेंसन ने न्यू कैसल में संयुक्त रूप से लोकोमोटिव निर्माण के लिए कंपनी स्थापित की। इस रेल लाइन के लिए इस्तेमाल की गई पटरियां गढ़ा लोहा की थी, जिनका उत्पादन बेडलिंगटन आयर्नवर्क्स में जॉन बियरन किन्सा द्वारा किया गया। श्रोताओं, परिवहन के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में जॉर्ज स्टीफेंसन का योगदान अभूतपूर्व है। 12 अगस्त 1848 को 67 वर्ष की आयु में चेस्टरफील्ड डर्बीशायर इंग्लैंड में इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली। आज भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश और दुनिया को दिए गए उनके योगदानों की वजह से वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। विज्ञान वाणी टीम की ओर से उन्हें सादर नमन। श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं, दुनिया के आधी से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और जलवायु को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन और पर्यावरण को बनाए रखने में महासागरों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। थीम की बात करें तो विश्व महासागर दिवस 2026 की थीम है हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र। यह विषय 2030 तक कम से कम 30% भूमि, जल और महासागर की रक्षा करने जैसे वैश्विक लक्ष्यों को बढ़ावा देता है। श्रोताओं, महासागर का महत्व तो है ही, और महासागरीय पारितंत्र यानी महासागर का जो इकोसिस्टम है उसका भी अपना एक महत्व है। तो क्या है महासागरीय पारितंत्र की महत्ता, आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी।
1: महासागर पारितंत्र या समुद्रीय पर्यावरण भी जलीय पर्यावरण का ही एक अंग है, किंतु यह उससे कई अर्थों में भिन्न है। अपने आकार, प्रकार, रासायनिक, भौतिक संरचनाओं तथा गहराई एवं विस्तार के कारण यह कम परिवर्तनशील एवं कम गतिशील होता है। समुद्र में पाए जाने वाले जीव एवं वनस्पतियां भी जलीय जीवन से भिन्न होती हैं। आज जिसे हम अलग अलग महाद्वीप और महासागर के नाम से जानते हैं, वह 200 करोड़ वर्ष पहले एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया चारों ओर से जलभाग से घिरा हुआ था। उस जलभाग को पेंथालासा के नाम से पुकारते थे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया पेंजिया के उत्तरी भाग में स्थित थे, जिसे लोरेशिया कहते हैं, तथा इसका दक्षिणी भाग ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका मिलकर दक्षिणी भाग बनाते थे, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। लोरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर स्थित था। उत्तरी अमेरिका यूरोप से तथा दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग हुए, जिससे अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ।

अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय भारत तथा अफ्रीका से दूर होते गए, जिससे पेंथलासा का कुछ भाग हिंद महासागर में बदल गया। आज पृथ्वी पर 5 महासागर विद्यमान हैं: प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अंद महासागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, उत्तर ध्रुवीय महासागर आर्कटिक ओशन एवं दक्षिण ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिक ओशन। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और हिंद महासागर सबसे छोटा। महासागर वस्तुतः खारे पानी का विशाल क्षेत्र है और पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। महासागर का पानी अत्यंत खारा होने के कारण पीने तथा अन्य कार्यों के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। विश्व के समस्त महासागरों की जलराशि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागर में हुई थी। समुद्र तल से लेकर समुद्र की सर्वाधिक गहराई तक के क्षेत्र को समुद्रीय वातावरण कहते हैं। इसके दो भाग हैं, विलापवर्ती या पैलेजिक प्रदेश। यह समुद्री सतह का वह क्षेत्र है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। नितलस्थ या बेंथिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत तटवर्ती रेखा से शुरू होकर अत्यधिक गहराई तक का समुद्री तल आता है। पैलेजिक प्रदेश को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, नेरेटिक क्षेत्र, यह उथले क्षेत्र का जल का क्षेत्र है जो समुद्र तट से 200 मीटर की गहराई तक फैला रहता है। इस क्षेत्र में वनस्पति तथा डायटम की प्रचुरता होती है। यह क्षेत्र मछलियों के लिए प्राकृतिक क्षेत्र होता है। महासागरीय क्षेत्र या ओशनिक जोन, महाद्वीपीय सेल्फ से आगे की ओर खुले सागर का वह भाग जो कि महाद्वीपीय ढलान के ऊपर स्थित होता है महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। इसका ऊपरी भाग प्रकाशित होता है जबकि नीचे वाला भाग अंधकार युक्त रहता है। बेंथिक क्षेत्र भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन। यह उच्च एवं निम्न ज्वार के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ इसोपॉड, गैस्ट्रोपॉड तथा मछलियों की प्रचुरता होती है। गंभीर सागर क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार समुद्र में 200 मीटर की गहराई से लेकर अधिकतम गहराई तक फैला रहता है। यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। महासागरीय सतह सर्वत्र समरूप नहीं होता है। कहीं अंतःसागरीय मैदानों की स्थिति है तो कहीं तीव्र ढाल वाले महादेशीय ढालों की, तो कहीं महादेशीय छज्जों की, तो कहीं अथाह सागरीय गर्तों की, जिसमें कई कई एवरेस्ट एक ही साथ समा सकते हैं, और कहीं उत्तुंग शीर्षों वाले कटकों की। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त हैं। मेरियाना नामक गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। महासागरों के जल में पर्याप्त मात्रा में लगातार गति होती रहती है, जिसे महासागरीय जल का संचलन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप महासागर में तरंगों एवं जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। तरंगों में प्रमुख हैं सुनामी, तूफानी तरंगे, सीसेस, प्रलयंकारी तरंगे आदि। सुनामी अंतःसागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। कभी कभी ये 30 मीटर की ऊंचाई वाली होती हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटीय भाग में इनकी सर्वाधिक अनावृत्ति होती है। भयंकर सुनामी से तटीय भाग जलमग्न हो जाते हैं एवं जान माल की अपार क्षति होती है। ताप के आधार पर सागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं एवं ठंडी जल धाराएं। गर्म धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं और ठंडी जल धाराएं ध्रुवीय प्रदेशों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में मानसूनी हवा शीत तथा ग्रीष्म ऋतु में भिन्न भिन्न दिशाओं में चलती हैं, अतएव इनकी दिशाओं के अनुरूप ही धाराओं का भी परिवर्तन होता है। महासागरीय धाराएं न केवल महासागरीय जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके द्वारा समुद्र तट से संलग्न भूभागों की जलवायु भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त जलयानों के मार्ग, मत्स्य उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि भी महासागरीय धाराओं की प्रकृति तथा उनकी अन्य विशेषताओं से भारी मात्रा में नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार इन धाराओं का मानव जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सागर का जल प्रतिदिन उठता तथा गिरता है। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप सागर तल के

0: है जो प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट को प्रभावित करता है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे का जल के ऊपर आने के प्राकृतिक क्रम में रुकावट पैदा होती है। सामान्यतः समुद्र में गहराई से ऊपर आने वाला जल अपने साथ काफी मात्रा में मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ लाता है। यह क्रिया एलनिनो के कारण रुक जाती है, फलस्वरूप मछलियां मरने लगती हैं और मछुआरों के लिए यह समय सबसे दुखदायी होता है। एक बार शुरू होने पर यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीनों चलती है। एलनिनो का एक प्रभाव यह होता है कि वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम समुद्र से चाहे जितने भी दूर पर स्थित हों, समुद्र का प्रभाव हम पर पड़ता ही है। महासागरीय पारितंत्र की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। विश्व की समृद्धि एवं अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। दुनिया की आधी आबादी समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है और आजीविका के लिए सागरों या महासागरों पर आश्रित है। समुद्र में मछली मारी लाखों मछुआरों को आजीविका प्रदान करता है। समुद्र में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव तथा समुद्रीय घास का क्षेत्र मछलियों के लिए अनुकूल आवास हैं। मैंग्रोव विशेष प्रकार की वनस्पतियां हैं जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सागर तटीय निम्न भूमि तथा नदी मुहानों के समीप दलदली जगहों पर विकसित होती हैं। गंगा नदी के डेल्टा पर सुंदरवन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। महासागर की जैव विविधता महासागरीय पारितंत्र के स्वास्थ्य का सूचक होता है। हिंद महासागर हमबैक व्हेल का प्रजनन स्थल है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। पेंगुइन एवं एल्बेट्रॉस अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं व्हेल एवं डॉल्फिन, समुद्री कछुए, समुद्री ऊदबिलाव, शार्क, मैनेटी, वालरस, विशालकाय ऑक्टोपस, जेलीफिश, सी स्पाइडर, सी ककंबर, सील, श्रिम्प, क्रैब, कोरल आदि। महासागर कई खनिजों का भंडार भी है। ये खनिज नदियों द्वारा सागरों में लाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है सोडियम, मैग्नीशियम, टिन, मैग्नीज, जिप्सम, लाइमस्टोन, टिटेनियम आदि। समुद्र से मूंगा और हीरा भी मिलता है। समुद्र पेट्रोलियम पदार्थों का भी भंडार है। समुद्र मार्ग से ही पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन भी होता है, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि महासागरीय पारितंत्र आज खतरे में है। समुद्रीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन एवं प्रदूषण के कारण इसकी जैव विविधता का ह्रास हुआ है। हिंद महासागर में व्यापारिक मत्स्यकी के कारण टूना मछली के उत्पाद में 50-90% की कमी आई है। विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण महासागरीय पारितंत्र का संतुलन आज छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है, जिसका दुष्प्रभाव अंततः मनुष्यों के जीवन पर ही पड़ना है। आज महासागरों में भूसामरिक रूप में एक खतरा और बढ़ गया है। उदाहरणार्थ हिंद महासागर और उसके चारों ओर का क्षेत्र शस्त्रास्त्रों के अंबार, गहरे तनाव और युद्ध का क्षेत्र बन गया है। यहाँ तक कि हिंद महासागर में नाभिकीय अस्त्रों की सुरंगें भी बिछाई जा चुकी हैं। हिंद महासागर में जो सैनिक जमाव किया जा रहा है, उससे कभी भी एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। आज जरूरत है नष्ट हो रहे महासागरीय पारितंत्र को बचाने की, और इसके लिए हम में से हरेक को अपनी भूमिका निभानी होगी। महासागरीय पारितंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विश्व में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्व महासागर दिवस विश्व भर में 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस का दिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष महासागरों की वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर देता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी का संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान आकर्षित करना है। आइए हम अपने महासागरीय पारितंत्र को बचाने का संकल्प लें।
1: श्रोताओं, धरती पर जीवन का आधार पर्यावरण है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरे भरे जंगल और जैव विविधता मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण को गंभीर संकट की ओर धकेल रहा है। यही कारण है कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके, जो इस वर्ष भी मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। वर्ष 2000

0: 2026 में इस दिवस का केंद्र बिंदु जलवायु परिवर्तन और प्रकृति आधारित समाधान है। दुनिया भर में बढ़ते तापमान, अनियमित मौसम, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं यह संकेत दे रही हैं कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर है, पर्यावरण संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें छोटे छोटे कदमों के माध्यम से बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। इसके इतिहास की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसे स्थापित करने का निर्णय लिया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, तब से यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता अभियान बन चुका है। श्रोताओं, पर्यावरण बचाने के लिए क्या करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते हैं, इसे हमने जानने का प्रयास किया जिला वन पदाधिकारी भागलपुर से। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत।
1: श्रोताओं, हमारे साथ मौजूद है DFO भागलपुर आशुतोष राज जी। किस तरह से पर्यावरण दिवस हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, वन के लिए महत्वपूर्ण है और आम जनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और किस तरह की जागरूकता हमें बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं सर के विचार।
2: तो आज हम लोग ये विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, इसमें बिहार सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए। आज जो है वो हमारा हरित आवरण बढ़ के 15-16% के आसपास हो गया है। भागलपुर में भी जो हम लोग का पिछले वर्ष 2021 में जो आकलन था उसमें 2.72% था, अभी 4.02% फॉरेस्ट कवर है। तो इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है, लोग हरित आवरण बढ़ाएंगे तो उससे जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इम्पैक्ट है उससे हम लोग को कमी देखने को मिलेगा। फिर अभी जो ये बहुत इंटेंस आंधी आ रही है या फिर हीट वेव चल रहा है, तो इसमें हम लोग को पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरत है। ये सब सिग्नल्स हैं कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट के साथ जो हम लोग ये छेड़छाड़ कर रहे हैं पृथ्वी के साथ, उसका दुष्परिणाम निकल के आ रहा है। तो इसमें केवल मात्र सरकार नहीं बल्कि जितने भी जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी है और जो लोग हैं, सबको मिलकर इस तरफ कदम उठा के और एक सार्थक प्रयास करना पड़ेगा।
1: सर, पर्यावरण दिवस पर आपने जिस तरह से जागरूकता के बारे में कहा, क्या वन आच्छादन जो है जो बढ़ाने का कार्यक्रम बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी करती रहती है, उसमें आम जन किस तरह से भाग ले सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में कुछ लोगों को आप जागरूकता संदेश सर देना चाहेंगे?
2: बिहार सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं इस संदर्भ में चलाई जा रही हैं, जिसमें कि आम लोग भी मिलकर इसमें कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो कि हमारा जो विभागीय पौधाशाला है वहाँ से किसी भी प्रजाति का वृक्ष वो 10 रुपए देकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कुछ निःशुल्क वितरण का भी योजना है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग गाँव में जाकर निःशुल्क भी वितरण करते हैं, जीविका दीदियों को देते हैं। इसके अलावा भी कृषि वानिकी की योजनाएं हैं, कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना में किसी भी प्रजाति का जो किसान बंधुओं को लगता है कि वो वृक्ष लगा सकते हैं, वो 10 रुपए का सुरक्षित मूल्य देकर वो पौधा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वो 3 वर्ष तक उसकी देखभाल करते हैं और उसकी उत्तरजीविता 50% से ज्यादा होती है तो उस पर उनको 70 रुपए वापस कर दिए जाते हैं, मतलब 60 रुपए की प्रोत्साहन राशि और 10 रुपए जो पौधे से के लिए लिया गया था उनसे वो भी उनको वापस कर दिया जाता है, एक अवेयरनेस के लिए ये है। और एक और योजना है कृषि वानिकी पॉपुलर योजना, जिसमें की पॉपुलर प्रजाति की जो वृक्ष है तो उसमें भी सेम यही प्रोत्साहन राशि का अमाउंट है, 10 रुपए में खरीदते हैं और उनको फिर 3 वर्ष के बाद फिर 70 रुपए वापस मिल कर दिए जाते हैं। तो कृषक बंधु जो है वो इसको इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिससे कि एक तो हरित आवरण भी बढ़ेगा और जो वो फिर जो पेड़ है 3 वर्ष के बाद वो उनका अपना पेड़ हो जाता है तो उसका फल तो वो खाते ही रहेंगे, मिलता रहेगा उनको और उससे उनकी आय भी बढ़ती है। ये 2 योजनाएं हैं जो मुख्यतः है। बाकी फिर एक मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना भी है, जिसमें कि प्राइवेट नर्सरी लगाने के लिए भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिससे कि लोग लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर, बिल्कुल, आपने काफी विस्तार से बताया सर, और इससे जो भी श्रोता होंगे जो इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जरूर इससे काफी मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सभी को जागरूक होना होगा, जिस तरह आपका संदेश है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग इसको जरूर अपनाएंगे। सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान जरूर देंगे। श्रोताओं, ठंडे दूध के गिलास

0: काफी मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सभी को जागरूक होना होगा, जिस तरह आपका संदेश है हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग इसको जरूर अपनाएंगे। सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान जरूर देंगे। श्रोताओं, ठंडे दूध के गिलास

कई देशों में दूध का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया था और चीन सहित कई देशों ने दूध के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। श्रोताओं, दूध हमारे लिए एक पौष्टिक आहार से कम नहीं है, इसलिए दुग्ध दिवस का महत्व यही है कि हम दुग्ध

जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे। कई देशों में दूध का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया था और चीन सहित कई देशों ने दूध के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। श्रोताओं, दूध हमारे लिए एक पौष्टिक आहार से कम नहीं है, इसलिए दुग्ध दिवस का महत्व यही है कि हम दुग्ध के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सरसंगम में सुनिए बलराम दास मिश्र का तबला वादन तीन ताल में। इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं नागेश्वर मिश्र।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में अभी आप सुन रहे थे बलराम दास मिश्र का तबला वादन तीन ताल में। इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे नागेश्वर मिश्र। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए सचिदानंद सिंह के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं देवी गीत।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। सच्चिदानंद सिंह की आवाज में अब आइए सुनते हैं निर्गुण।

जय भूषा सुररिया हमरे बाबूजियो, छोड़ी के नहीं हरबा एक दिन, जय भूषा।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज। रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित। रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना 300 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में खाना पकाने की गैस की कीमतों से कम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से संपादक मीनाक्षी राय के साथ मैं आसिया नाजली।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है, समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश प्रवक्ता तथा IT एवं मीडिया सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर बाद सभी

0: मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इससे पहले अपने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने श्री नवीन पुकारो पहुंचे। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड में उनके कदम पड़े हैं, हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे।
0: रांची से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ में श्री नवीन ने शहीद निर्मल महतो चौक पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नज़र आगे की रणनीति और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी है। झारखंड के सिमडेगा जिले की

0: निरंतर प्रयासों से स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य, महिला किसानों को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। पाकुड़ में जिला खनन कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी किए जाने को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने पत्थर खदानों का लीज हासिल करने के लिए खनन कार्यालय द्वारा निर्गत सन्निहित रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी कर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाधान निर्धारण प्राधिकरण रांची से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं खनन पट्टा हासिल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए। जामताड़ा जिला में उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम ने जिले के चिन्हित पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
1: हमारे सारे वरीय पदाधिकारी हर एक पंचायत में जाके ग्राउंड लेवल पे जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और उसमें उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों को इनपुट मिलेगा उसको हम लोग एज अ डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका हो सके।
0: कोडरमा के झुमरी तिलैया में जूट से उत्पाद तैयार कर न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्पों को साकार करने में जोर जोर से जुटी हैं। इंदरवा की रहने वाली राधा यादव के साथ तकरीबन 20 महिलाएं महिला सशक्तिकरण के साथ प्लास्टिक मुक्त के संदेशों को साकार करने में जुटी हैं।
2: मेरे साथ 20 महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो 18 से 20-21 साल के हैं, और ये सब को हम एक जगह इकट्ठा किए। जब उन लोग के हाथ में पैसा आया तब ये लोग अच्छा लगा कि ये अपना पैसा है। हम सोचते हैं कि ये कुछ धीरे धीरे अगर ये लेडीज भी सीखे और अपना व्यापार कर सके और इससे भी और आगे जाए।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो है। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची द्वारा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह और महापौर रोशनी खलको शामिल हुए। सभी अतिथियों ने युवाओं को फिट इंडिया आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और झारखंड का मान बढ़ाया। 78 देशों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच रोशन ने अपने उत्कृष्ट कौशल, शारीरिक संतुलन और कठिन आसनों से जजों को प्रभावित कर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपये में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा IT सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज।

0: रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अंतराल क्षमा करेंगे श्रोताओं, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को पुनः जारी रखते हुए सचिदानंद सिंह की आवाज में सुनते हैं श्रृंगार गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सचिदानंद सिंह की आवाज में पूर्वी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे सचिदानंद सिंह। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

स्वागत करै छियै सभ्य श्रोता भाई बहिन के हुनकर पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। सभ्य के अकलो के नमस्कार, आर बताबो की हाल चाल। आशा करै छियै कि सब कुछ बढ़िया होते, केना खे तपलो गर्मी में काल जे झोड़ पानी देलखौ आरो पिछला सप्ताह भी जे झोड़ बुनी देलो छले ओकरासँ कुछ न कुछ राहत मिललो छै। आरो बाजार में भी देखो आम लीची तभी भरलो पड़लो छै, यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा रखे वास्ते मौसम भी अच्छा हो गेलो छौ आरो खाए पिए के भी संसाधन जे छै ओहो मिल रहलो छै। लेकिन कि थोड़ा सा सचेती का, थोड़ा सा चेती का, अपनो आपके थोड़ा सा संभाली करी का अगर रखबो तभी स्वास्थ्य अच्छा रहते है। नहीं कि खावे फिर में कच्चा पक्का सरलो पकलो जे छो वो खा लेलो, बासी ते बासी खा लेलो, एना नहीं करना छे, कना कि एकरा से बहुते प्रकार के बीमारी हो जाए छे। आरो खाना तो खाना अगर दूषित पानी भी पीबी लो तो ओकरो से बीमारी होय वाला छे, हो जाए छे। एकरा से बचे के वास्ते आरो सबका जागरूक करे के वास्ते आज के दिन हम असनी मनाए रहलो छे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हाँ, खान पान से के सुरक्षा, सबका खान पान मिलब, सबके थाली में जे छे खाना मिलब, सबके गिलास में स्वच्छ पानी मिलब, यही वास्ते विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए छे। दूषित भोजन आरो पानी से हुए वाला बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ावे आरो खाद्य सुरक्षा का प्राथमिकता दिए के वास्ते हर साल 7 जून यानी आज खनी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनेलो जाए छे। एकरो मुख्य उद्देश्य छे सुनिश्चित करना है कि खेत से लाए करी का थाली तक सभ्य का पौष्टिक आरो सुरक्षित भोजन मिला। खाली खाने नहीं मिला, खाली भोजने नहीं मिला, बल्कि कहनो भोजन मिला पौष्टिक आरो सुरक्षित है। महत्वपूर्ण दिवस का मनावे के मुख्य कारण छै जखरी में कि जना मुख्य कारण छै कि बीमारी से बचाना। बीमारी से बचाओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दूषित भोजन के सेवन से दुनिया भर में लाखों लोग हर साल विभिन्न बीमारी जना कि दस्त, फूड पॉइजनिंग, संक्रमण के शिकार होए छे। है दिन है सब बीमारी से बचाव के तरीका पर जोर दे छे। फेनु छे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना। है दिन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे में विज्ञान, अनुसंधान आरो तकनीकी ज्ञान के महत्व का उजागर करे छे, ताकि भोजन का असुरक्षित हुए से रोकलो जा सके छो। आरो फेनु सतत विकास के समर्थन भी आज के दिन करे छे, यानी सुरक्षित भोजन अच्छा स्वास्थ्य के नींव छिके जे आगू चली करी का बेहतर आजीविका, आर्थिक विकास आरो टिकाऊ कृषि प्रणाली में योगदान दे छे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी आज खनी जे हमसनी 7 जून 2026 का मनाए रहल छिए अब की बार, है बार के थीम छे बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। हर जगह सुरक्षित भोजन है बात के याद दिलावे छे कि सुरक्षित भोजन केवल सरकारी निगरानी के विषय नहीं छे, बल्कि है समाज के भी साझा जिम्मेदारी छे, यानी सरकार और समाज।

समाज सब मिली करी कर एकरा पर विचार करते तभी जे छे आज के दिन के उद्देश्य एकदम जे फलीभूत होते कि आज जे है हम सनी लाए रहल छी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन खाद्य सुरक्षित हुआ, खान पान सुरक्षित हुआ आरो पौष्टिक खाना मिला है तभी जे छे अच्छा भी होते, जबकि समाज आरो सरकार दोनों मिली करी का एकरा पर काम करते। आरो सबसे देखो एक तो अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देवला बात छे तो कि ओकरा वास्ते स्वास्थ्य का अच्छा रखना छे, स्वास्थ्य के छोटो छोटो जे छे काम करना चाहिए जकरा से हमरो स्वास्थ्य अच्छा रह, जना कि बच्चे से आदत डलवाना छे कि खाना खाए से पहना जे छे हाथ धोवो, यानी हाथ धोवो तब खाए बैठो, खाना खाए के बाद हाथ धोएला, शौच से अयला बाद हाथ धोवो, पैर धोवो, है जे छोटो छोटो जे आदत छे अगर एकरा अपनो जीवन में उतारी लेबे बचपन से ही सब बच्चा बुतरू का अबड़काक तो है समझने छे आरो जिंदगी में है काम करने छे, तो अगर है बात उतारी लेते अपनो जीवन में तो स्वस्थ भी रहते आरो फैनो खाना जे खेते वो देह में लागबो करते। चलो एकरा पर आरो ढेर को बात करबे, लेकिन अभी सुने छी है चौमासा,

जेठ अखाड़ सावन और भादव के महिमा के बखान हम असनी सुनलिए है चौमासा में राजेश कुमार पंडित जी से। चलो आगे आरो ढेर को बात करबे लेकिन अभी सुनै छिए कुछ संदेश।

0: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनु से सभी श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। और देखो कहलो जाय छे कि जहां जाय रवि वहां जाय कवि, लेकिन अपनो है जे आकाशवाणी भागलपुर छे ओकरा में अंग दर्पण कार्यक्रम जे छे ओकरा में नित नया नया यहाँ कवि लेखक के बोलता रहे छे, जे कि अपनो कविता से कहानी से समाज के श्रोता बंधु के भाई के बहन के सबके जे छे ओतप्रोत करता रहे छे, बतेता रहे छे कि समाज और है प्रकृति केहनो छे। तो यही कड़ी में चलो आगे बढ़े छे और आज कनी हमरा सनी के बीच उपस्थित छे मनोज कुमार मिश्र जी और उन्हें तीन चार ठो अंगिका कविता सुना रहे छे। तो चलो सब मिलकर सुने छे उनका से अंगिका काव्य पाठ।
1: हमरो पहला कविता छे, शीर्षक छे माय। माय के अचरा में हम की पाए छे एकरो संक्षिप्त विवरण छे। माय होय छे ममता केरो मूरत, माय होय छे ममता केरो मूरत, बहुत भोला होय छे माय केरो सूरत। माय होय छे ममता केरो मूरत, बहुत भोला होय छे माय केरो सूरत। सबटा दुख छिपाए के प्यार दे छे, सबटा दुख छिपाए के प्यार दे छे, सबटा खुशी में साथ दे छे। सबटा दुख छिपाए के प्यार दे छे, सबटा खुशी में साथ दे छे। माय के अंदर बसे छे भगवान, माय के अंदर बसे छे भगवान, माय के तो नहीं करो अपमान। माय में बसे छे भगवान, माय के तो नहीं करो अपमान। माय से बढ़ी के कोई शब्द नहीं होय छे, माय से बढ़ी के कोई शब्द नहीं होय छे, माय के गोड़ोतर स्वर्ग रहे छे। माय से बढ़ी के कोई शब्द नहीं होय छे, माय के गोड़ोतर स्वर्ग रहे छे। माय पुचकारे छे, माय पुचकारे छे हर समय अच्छा राह दिखावे छे, माय पुचकारे छे हर समय अच्छा राह दिखावे छे, दुखों में भी माय नेहो से नहावे छे, दुखों में भी माय नेहो से नहावे छे। माय के ही भगवान मानो, माय के ही भगवान मानो, माये से होथो तोरो निदान। माय के ही भगवान मानो, माये से होथो तोरो निदान, माय के सहारा बनना सीखो, माय के सहारा बनना सीखो, माय के बात मानना सीखो, एकरे में छो तोरो कल्याण। माय होय छे ममता के रो मूरत, बहुत भोला होय छे माय के रो सूरत। दूसरो कविता छो रौदा, पर्यावरण पर आधारित। रौदा के तो न बंद करो, रौदा के तो न बंद करो, रौदा के तो न बंद करो, रौदा के तो न बंद करो, रौदा सौंसे दुनिया के छे, रौदा सौंसे दुनिया के छे, कोई भेदभाव ने एकरा में, कोई भेदभाव ने एकरा में, कोई रंग रूप ने एकरा में, फटलो स्वरूप ने एकरा में, हर अंगना के है मीछ के, हर अंगना के है मीछ के, हर जीवन के संगीत छिके, हर अंगना के है मीछ के, हर जीवन के संगीत छिके, फूलों में है मुस्कान छिके, फूलों में है मुस्कान छिके, कांटों के भी यही जगावे छे, कांटों के भी यही जगावे छे, सबटा गीतों के छे छंद यही, सबटा गीतों के छे छंद यही, एकरा तो ने बंद करो, रौदा के तो ने बंद करो, रौदा के तो ने बंद करो।

0: तीसरो कविता छौ जकरो शीर्षक छे नारी के सम्मान। नारी के सम्मान लेली सीखो, नारी के सम्मान लेली सीखो, एक मसाल जलावे लेली सीखो, नारी के सम्मान लेली सीखो, एकटा मसाल जलावे लेली सीखो, सुतलो आदमी के जगावे लेली है छे सीख, सुतलो आदमी के जगावे लेली है छे सीख, नारी के मिले हर सम्मान, नारी के मिले हर सम्मान, जेकरा से मिटथौ आदमी के अज्ञान, नारी के मिले हर सम्मान, जेकरा से मिटते आदमी के है अज्ञान, हर नारी में देखो माय केरो रूप, हर नारी में देखो माय केरो रूप, नारी से ही बदले दुनिया के स्वरूप, हर नारी में देखो माय केरो रूप, और नारी से ही बदले दुनिया के स्वरूप, नारी ही सही रास्ता दिखावे छे, नारी ही सही रास्ता दिखावे छे, सही आरु गलत में है भेद बतावे छे, नारी ही सही रास्ता दिखावे छे, सही आरु गलत में भेद बतावे छे, करुणा भाव सहनशीलता भोली सूरत के पहचानो, करुणा भाव सहनशीलता और भोली सूरत के पहचानो, नारी नहीं होइ छे कमजोर, नारी नहीं होइ छे कमजोर, ओकरा सच्चा दिलों से जानो, नारी नहीं होइ छे कमजोर, ओकरा सच्चा दिलों से जानो, दहेज के कारण नारी बहुते कष्ट सहे छे, नारी लेली दहेज रूपी दानव के मारो, दहेज के कारण नारी बहुत कष्ट सहे छे, नारी लेली दहेज रूपी दानव के मारो, ममता के मूरत के पहचानो, ममता के मूरत के पहचानो, जहाँ भी होइ छे नारी के सम्मान वहीं बसे छे भगवान, जहाँ भी होइ छे नारी के सम्मान वहीं बसे छे भगवान, नारी के सम्मान लेली सीखो, एक मसाल जलावे लेली सीखो। शीर्षक छे पर्वत। पर्वत के ऊंचाई कुछ कहे छे, पर्वत के ऊंचाई कुछ कहे छे, सागर के गहराई कुछ कहे छे, पर्वत के ऊंचाई कुछ कहे छे, सागर के गहराई कुछ कहे छे, तोड़ो अंधकार के जंजीर के, तोड़ो अंधकार के जंजीर के, बांधो संबंधों के लकीर के, पर्वत के ऊंचाई कुछ कहे छे, सागर के गहराई कुछ कहे छे, तोड़ो अहंकार के जंजीर के, बांधो संबंधों के लकीर के, नफरत में दर्द भरलो रहे छे, नफरत में दर्द भरलो रहे छे, प्रेम से ही हर रिश्ता सजलो रहे छे, नफरत में दर्द भरलो रहे छे, प्रेम से ही हर रिश्ता सजलो रहे छे, याद ने करो कल के, याद ने करो तो बितलो कल के, खुशी के जियो हर पल, याद ने करो तो बितलो कल के, खुशी से जियो हर पल के, शंका के अंधा रोड के मनो पर नहीं लावो, शंका के अपने मनो पर नहीं लावो, है आज जरावो अपनो मन के, आए जरावो अपनो मन के, है दुनिया बहुत सुंदर छे, है दुनिया बहुत सुंदर छे, केकरा नहीं हुए दुख सोची के चलो, है दुनिया बहुत सुंदर छे, केकरो नहीं हुए कोई दुख है सोची के चलो, बिना जानले, बिना जानले है नहीं आगे बढ़ो, बिना जानले है आगे नहीं बढ़ो, भोर को प्रकाश साथ नहीं देथो, भोर को प्रकाश साथ नहीं देथो, फूल बने लेली सीखो, पर्वत की ऊंचाई कुछ कहे छे, सागर के गहराई कुछ कहे छे।
1: देख लो कत्ता सुंदर सुंदर कविता सुनिल कहनी, माय रौदा नारी के सम्मान और पर्वत, यानी माय के भी महत्ता दल के, नारी के सम्मान के करे के बात बतल के, आरु है जे प्रकृति छे, प्रकृति जे रौद आरु पर्वत दिलो छे, एक रौद से कुछ सीखेल कल के, ते इतना अच्छा अच्छा कविता जे हिनी सुनेल के, ते है वास्ता हिनका बहुत बहुत धन्यवाद दे छे, आरु लगे हाँ जे हमसनी एकटा जनेऊ गीत भी सुने छी।

यही जनोगीत के साथ अब आज के अंग दर्पण कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो छे। मिलबे अगला कार्यक्रम में, करबे ढेर को बात और सुनबे खूब गीत लाद। तब तक दा हमरा विदा, सबका अकलू के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज होगा। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि पंचायत स्तर से लेकर जिला अध्यक्षों तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए पार्टी के सभी प्रतिनिधि पटना पहुंचे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित

इस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहब, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रति वर्ष 300 रुपए की

0: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत।

श्रोतो, आज का ये संगीतमय कार्यक्रम कुछ खास है, क्योंकि आज का हर गीत किसी फिल्म का नहीं बल्कि आपके दिलों के खतों और ईमेल्स का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, वही खत जिनमें किसी ने अपने जज्बात लिखे, किसी ने अपनी यादें संजोई और किसी ने अपने अधूरे प्यार को गीतों में ढूंढ लिया। हमारे पास आज ढेरों पत्र और ईमेल्स आए हैं। कहीं किसी ने पुराने दिनों की मोहब्बत को याद किया है तो कहीं किसी ने किसी गीत में अपनी मुस्कान खोज ली है, और इन्हीं फरमाइशों के रंगों से सजी है आज की ये फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम। तो चलिए सुरों के इस डोर को थामते हैं और निकल पड़ते हैं उस दुनिया में जहां हर गीत एक कहानी कहता है और हर धुन किसी न किसी दिल की आवाज़ बन जाती है। आज की इस संगीतमय यात्रा में हम आपके भेजे हुए उन्हीं खतों और ईमेल्स की फरमाइशों को आपके लिए पेश करेंगे, और यकीन मानिए हर गीत आपके एहसासों को और भी करीब से छू जाएगा। तो तैयार हो जाइए, दिल खोल कर सुनिए और शुरू में खो जाइए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म संगीत की महफिल को एक बेहद रोमानी और भीगी हुई ताजगी से भर दिया है श्रोताओं के प्रेम से सराबोर पत्रों और ईमेल्स ने। कई श्रोताओं ने अपने संदेशों में मौसम की नमी और दिल की गर्माहट को जोड़ते हुए जिस गीत की फरमाइश भेजी है, वो गीत जैसे सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि एहसासों में भीग जाने का उत्सव है। टपकती बूंदों में कहीं यादों की सरसराहट है तो कहीं इंतजार की खामोश धड़कनें, और हर बूंद जैसे किसी अधूरी मुलाकात को पूरी करने की ख्वाहिश बनकर गिरती है। श्रोताओं ने अपने पत्रों और ईमेल्स में इस गीत को अपने जीवन के खास पलों से जोड़कर भेजा है। किसी ने इसे अपने पहले मुलाकात की बारिश बताया, तो किसी ने अपने बिछड़े हुए रिश्तों की भीगी यादों से इसे जोड़ा। तो आइए इस रुमानी मौसम और दिल को छू जाने वाली फरमाइश को आज की इस फरमाइशी फिल्म संगीत की महफिल में शामिल करते हैं और खो जाते हैं बरसात की इन मधुर बूंदों और सुरों की इस नर्म सी दुनिया में।

श्रोताओं, इस गीत को जिन लोगों ने, जिन श्रोताओं ने सुनना चाहा है, उनके नाम पहले हम आपको बता दें, फिर ये इस गाने का आनंद लेंगे। अहमदाबाद से आप हैं भालचंद्र वड़के, जतीन मेहता, विकास वड़के और नीलेश वड़के। आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक और मीका विरक। आप हैं नाज मंजिल, नगर निगम वार्ड नंबर 28 महसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, नवासी हुसैन नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। और आप हैं तिलका माझी से सुरेश कुमार मिश्रा, नूतन मिश्रा और बबली। तो सुनिए आप सबों की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सबों ने। मुजाहिदपुर पूरब टोला से आप हैं मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरमाज खान, अयाज खान और महमूदा खातून। बसवारा फुंसिया से आप हैं पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू, राजा, सौरभ और गोलू। आप हैं विनोद कुमार शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आप हैं महेश कुमार सिन्हा। आप सबों की फरमाइश पर प्रस्तुत है ये बहुत प्यारा सा गीत। श्रोताओं के प्रेम से भीगे हुए पत्रों और ईमेल्स ने आज की इस फरमाइशी फिल्म संगीत की महफिल को एक बेहद रोमानी, नर्म और चांदनी से भर दिया है। कई श्रोताओं ने अपने संदेशों में दिल की गहराइयों से जिस गीत की खास फरमाइश भेजी है वो एक ऐसा गीत है जिसमें नज़ाकत भी है और मोहब्बत की मासूम सी शरारत भी। ये गीत जैसे चांदनी रात का एक नाजुक सा राज है जहां चांद भी झुककर देखने लगे और चेहरा किसी ख्वाब की तरह, किसी ख्याल की तरह रोशन

चन हो उठे। इसकी हर पंक्ति में मोहब्बत की वो नज़ाकत है जो छुपाने से भी छुपती नहीं। तो आइए इस रुमानी चांदनी और श्रोताओं की फरमाइशों से सजी इस महफिल में हम इस गीत को शामिल करते हैं और खो जाते हैं इसके नर्म रेशमी और चांद जैसी उछली दुनिया में।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

AIR at 90. अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं की प्रेम भावनाओं और दिल से लिखे गए पत्रों और ईमेल्स ने आज की इस फरमाइशी फिल्म संगीत की महफिल को एक अलग ही रंग और रूहानियत से भर दिया है। कहीं किसी ने यादों की परतें खोली हैं तो कहीं किसी ने अपने दिल की चुप्पी को सुरों में पिरो दिया है। और इन्हीं जज्बातों के बीच जो फरमाइश सबसे ज़्यादा दिल के करीब महसूस हुई वो हम आगे आपको सुनवाएंगे। पहले उन श्रोताओं के नाम बता दें जिन्होंने इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है। आप हैं लालमाता सुदामा नगर रतलाई जिला झलवाड़ा राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। आप हैं धुरैया गंगदौरी से रामविलास रविकांत नीरज अमर मारुति सावित्री देवी कावित्री तनुजा और शानदेव हरी। मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार ऋतिक रोशन डोलू। बैजानी चौबे टोला से आप हैं वर्षा वंदना कन्हैया शांतनु निहाल साक्षी चीकू पवन नीतू मीतू इशु और आप हैं आद्या कहलगांव से आप हैं सुजीत राय। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से गोपाल प्रसाद साह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्रामबाद से आप हैं राजू सुमन हिमांशु छोटी बाबू कंचन डब्लू बबली फूलन और बबलू। दोस्तों ये जो गीत आपने फरमाइश के रूप में हमें भेजी है और जो अब आप सुनेंगे ये केवल एक गीत नहीं बल्कि किसी के दिल की धड़कती हुई आवाज़ है जिसमें बिंदिया की चमक किसी पहली मुलाकात की मासूमियत है और चूड़ियों की खनक किसी की याद की दस्तक और लौंग के लश्कारे किसी अधूरी मोहब्बत की मीठी सी तड़प। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को और भी खास बनाते हैं और दिल के बहुत करीब से आई इस फरमाइश को सुरों की रेशमी चादर पर सजाकर आपके हवाले करते हैं।

0: लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। कटोरिया से आप हैं शहादत अली, सालिक शहादत, सिद्रा शहादत और शाहिना परवीन। चंपानगर से आप हैं शबीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। भीकनपुर भट्टा रोड से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी और यशा। बांका से आप हैं रमेश साह और उनके परिवार के सभी सदस्य। गोराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन और नीलेश नंदन। ततारपुर से आप हैं नाना कौशल, अरशान अहमद और जरीश अहमद। आप सबों ने जिस गीत के लिए फरमाइश भेजी है वो गीत जैसे किसी अनकहे एहसास की कहानी है, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं बोलने लगती हैं। ये गीत उस दिल की आवाज़ है जो अपने जज्बातों को समझ भी नहीं पाता और महसूस भी बहुत गहराई से करता है। श्रोताओं ने अपने पत्रों और ईमेल्स में इस गीत को अपने यादों, अपने इंतज़ार और अपने दिल की चुप्पियों से जोड़कर भेजा है और यही वजह है कि आज का ये फिल्म संगीत इस गीत के बिना अधूरा सा लग रहा था। तो आइए आपकी इस खूबसूरत फरमाइश को आज की इस फरमाइशी फिल्म संगीत में शामिल करते हैं और डूब जाते हैं इस मासूमियत भरे गीत की रूहानी धुनों में।

तो ये था फरमाइशी फिल्म संगीत का अंतिम गीत। ये आज का अंतिम गीत है दोस्तों, इस कार्यक्रम का नहीं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे फिर मिलेंगे और आपके प्यारे प्यारे प्यारे खतों और ईमेल्स को फिर से अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपको आपके पसंदीदा गीत सुनवाएंगे। तो आज दीजिए इजाज़त मीनू को इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, इस वादे के साथ आज बस इतना ही।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत। यही आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीता पाठशाला।
0: मारुति संगीता पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडु तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला जी की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुवा बगे
1: व्योम कानुवा बगे
0: हसीव मरेसी
1: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काला
1: मुक्त गगन नूरु काला
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना?
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता ताकी।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजरात।

गुजराती और रेखा गुजराती का। इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। मजनू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए। बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है। बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे।
1: जी
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में।
1: जी
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: कुर्बानी
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में, हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं, और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे।

0: लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया, तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने,
1: दिल्ली में।
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छा।
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको
1: हाँ
0: तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में। हाँ
0: और चितलकर का और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां
1: हाँ
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना,
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए।
1: जी
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो
1: भूलो
0: सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि
1: हाँ
0: ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है, और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे, और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है।
1: जी।
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी।
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है, हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी।
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक, और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी।
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली।
1: जी, जी जी
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है जी।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे।
0: जी,
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी,
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं का,
1: इतनी भाषाओं के हमारे वहाँ अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा जाता
1: और आज भी आते हैं वो, मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती,
0: नहीं होती।
1: बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे अंग्रेजी में आएंगे,
0: हाँ,
1: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: एक नहीं 2-3 रेडियो थे क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना, तो रेडियो उनका साथी था। मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
0: अच्छा,
1: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
0: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था। हाँ, और हाँ, हर कण कण
1: तो
0: में वो
1: ये जो जागरूकता थी ना वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं माँ और

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा। क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा। और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता
1: और मैं सुप्रिया।
0: युवाणी के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी हमारी तरह कुशल मंगल होंगे।
1: दोस्तों, आज रविवार है, संडे यानी फंडे। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा को जान लेते हैं। आज सर्वप्रथम हम कार्यक्रम के प्रारंभ चर्चा करेंगे, चर्चा से
0: फिर हम आपको संविधान से जुड़ी जानकारी देंगे,
1: डेली ट्रिविया के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे आपसे,
0: आकाशवाणी से संबंधित रोचक तथ्य बताएंगे आपको,
1: कार्यक्रम के मध्य में फिल्मी गीत भी सुनाएंगे आपको एवं अंत में समसामयिक की।
0: दोस्तों, आज हम चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज चर्चा का विषय है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मनाया जाता है। सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन की शैली है, आधारशिला है तथा यह अनेक बीमारियों से बचाव करता है। आज के समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ भंडारण और गलत प्रसंस्करण के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न

0: हो रही हैं। दूषित भोजन से फूड पॉइजनिंग, दस्त, हैजा तथा अन्य गंभीर रोग फैल सकते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
1: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि खेत से लेकर थाली तक भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसानों, खाद्य उद्योगों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छता बनाए रखना, भोजन को सही तापमान पर रखना तथा समाप्ति तिथि वाले उत्पादों की जांच करना खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय हैं। अतः हमें सुरक्षित भोजन अपनाने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लेना चाहिए। स्वस्थ समाज और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।
0: दोस्तों, आज चर्चा में केवल इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अंतराल के पश्चात युगवाणी कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हम दोनों।
4: दोस्तों, अंतराल के पश्चात अब हम आपसे पूछेंगे डेली ट्रिविया के अंतर्गत एक प्रश्न। प्रश्न है, किस वर्ष में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण हुआ था? आप तब तक इसका उत्तर सोचें और ले एक मधुर गीत का आनंद।
3: गीत धुन फिल्म सैयारा से गायक अरिजीत सिंह।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत धुन फिल्म सैयारा से। गायक कलाकार थे अरिजीत सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ, आइए जानें संविधान को की तरफ। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए प्रशासनिक कार्यों के लिए भाषा व्यवस्था निर्धारित करना है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी है। साथ ही आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग का भी प्रावधान किया गया है।
1: अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 345 से 347 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा विधायी दस्तावेजों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 350 नागरिकों को अपनी शिकायत किसी भी मान्य भाषा में प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350A मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने पर बल देता है तथा अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रसार का निर्देश देता है। इस प्रकार भाग 17 भारत की भाषाई एकता, सांस्कृतिक विविधता तथा प्रशासनिक सुगमता के बीच संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है।
0: दोस्तों, आइए जानें संविधान को में आज केवल इतना ही। दोस्तों, आपसे डेली ट्रिविया में मैंने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, किस वर्ष में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण हुआ था? इसका सही उत्तर है सितंबर 1974। दोस्तों, आकाशवाणी से संबंधित एक रोचक तथ्य बताते हैं आपको।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1976 में दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना

0: ना की गई।
1: रोचक तथ्य में केवल इतना ही दोस्तों, अब हम आपको एक गीत सुनाएंगे। गीत है
0: खोया है, फिल्म बाहुबली से गायक नीति मोहन और काल भैरव।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत खोया है, फिल्म बाहुबली से। गायक कलाकार थे नीति मोहन एवं काल भैरव। चलिए इसी बहाने एक और मधुर गीत का आनंद लेते हैं।
1: गीत है नैना दा क्या कसूर, फिल्म अंधाधुन, गायक अमित त्रिवेदी।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत नैना दा क्या कसूर। फिल्म अंधाधुन से गायक कलाकार थे अमित त्रिवेदी। चलिए इसी बहाने एक तड़कते भड़कते एक और गीत का आनंद लिया जाए।
1: गीत है बम डिगी डिगी, गायक फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी, गायक जैक नाइट और जैस्मिन वालिया।

0: दोस्तों अभी आप गीत सुन रहे थे बॉम डिगी डिगी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी से। गायक कलाकार थे जैक नाइट एवं जैस्मिन वालिया। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अंतिम स्तंभ की तरफ जो है समसामयिक की।
1: हाल ही में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला जैस्मिन लंबोरिया है। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड जीतने वाले फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। हाल ही में जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सोलर ग्रोथ मार्केट के रूप में दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में मैट्रे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री नियुक्त हुईं।

0: चीनी फूड ब्लॉगर फैन सुमू ने 60 किलो चॉकलेट से चीनी इतिहास की एक मशहूर प्राचीन पेंटिंग पर आधारित 3D छोटा मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल 7 मीटर लंबा और 1.22 मीटर चौड़ा है। इसमें 800 से ज़्यादा लोगों के साथ सैकड़ों घर और पेड़ बेहद बारीकी से बनाए गए हैं। जगह कम पड़ने पर उन्हें काम के लिए 25 किलोमीटर दूर एक बड़ा घर किराए पर लेना पड़ा। फैन सुमू ने यह कला ऑनलाइन वीडियो देखकर सीखी थी। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू हो रहा है। 28 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी कर रही नॉर्वे की टीम ने अमेरिका रवाना होने से पहले समुद्री लुटेरे थीम पर फोटोशूट करवाया। कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड और अर्लिंड हॉलैंड जैसे खिलाड़ियों वाली टीम ने शूट के जरिए संदेश दिया है कि वे सिर्फ खेलने नहीं बल्कि वर्ल्ड कप लूटने यानी ट्रॉफी पर कब्जा जमाने आ रहे हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, आप हमें अपने सुझाव से अवश्य अवगत करा सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पर phair.bhagalpur@gmail.com पर।
1: आप हमें पत्र या ईमेल आईडी भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, द्वारा केंद्र निदेशक युगवाणी कार्यक्रम, पिन कोड संख्या 812001। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, हम आपसे चटपटी बातें करेंगे, फिल्मी गीत सुनेंगे।
0: तब तक इंतज़ार रहेगा आपका। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त अर्पिता को और
1: सुप्रिया को।
0: नमस्कार, शुभ संध्या।

युवाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म बाबुल से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम, गीत समीर के हैं, संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

शान सुनीता राव और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे अशोक का फिल्म का गीत। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार अनु मलिक। और कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेवफा से। गायक कलाकार हैं

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश क्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ पल बाद संध्या 6 बजे आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रदर्शन। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे बासुकी प्रसाद यादव। प्रादेशिक समाचार पटना से आप सुन सकते हैं संध्या 7:30 पर। 7:52 पर सुरलहरी कार्यक्रम के कलाकार होंगे विजय कुमार दास। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम। समाचार संध्या प्रसारित होंगे रात्रि 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम आप सुनते हैं रात्रि 10 बजे। आप इसमें सुनेंगे विदुषी डॉक्टर मंदा सुधा रानी के को सुनेंगे कार्यक्रम। आप ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिल्ली केंद्र से। अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर।

5:55 पर आप सुनते हैं खेत खलिहान कार्यक्रम हिंदी में समाचार आप सुनते हैं प्रातः 6 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। चिंतन मनन का प्रसारण समय है 6:05। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:35 पर आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर राजीव सिन्हा से ली गई भेंट वार्ता, विषय है अपेंडिक्स फटना कारण एवं उपचार। इनसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार। रामचरित मानस गान पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे। इसमें आप जानेंगे मौसम सूचना, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां एवं रसरंग की कलाकार होंगी निशा कुमारी। और इसके साथ साथ आप इसमें सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

समाचार प्रभात का प्रसारण समय होगा सुबह 8 बजे। नए पुराने आप सुन सकते हैं 9:06 पर। 9:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे रणवीर प्रसाद सिंह। सुबह 10 बजे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और रात्रि दिन में 11 बजे आप सुनेंगे नई फिल्मों से कार्यक्रम। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनते हैं दिन में 11:30 पर। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं दिन में 12:30 पर। और लोक रंग कार्यक्रम का प्रसारण समय है दिन में 1 बजे। कलाकार होंगे नवल किशोर पासवान। प्रादेशिक समाचार रांची से आप सुनते हैं दिन में 1:10 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। दोपहर समाचार का प्रसारण समय है दिन में 2:15 पर। चित्रपट से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 से। बंगला गान कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे। हमारी जो आप 3 बजे से लेकर 3:25 से लेकर शाम में 5 बजे तक लुत्फ उठा सकते हैं विविध भारती कार्यक्रमों का। संध्या का कार्यक्रम हमारे केंद्र से आपके लिए प्रसारित होगा युववाणी कार्यक्रम, जो कि जिसका प्रसारण समय है संध्या 5 बजे। प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। ग्राम जगत खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 6 बजे। लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर। कल कलाकार होंगे विवेकानंद ठाकुर। 7:52 पर सुरलहरी के कलाकार होंगे डॉक्टर अजय राय। 8:30 पर आप सुनेंगे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद शरसार अहमद। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। श्री एल के पंडित का ख्याल गायन आप इसमें सुन सकते हैं। आप अभी सुन रहे थे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय एवं उनका संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार,
1: साथ में अकलू के भी नमस्कार, लाखों भाई अपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब कुछ बढ़िया छ हो, अपनों बताओ।
0: सब बढ़िया है अकलू भाई। और गड़बड़ तब हो जाती है जब हम

0: किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वो हमारे पर्यावरण हो, हमारा स्वास्थ्य हो।
1: बात एकदम 100% सही कह लो,
0: बिल्कुल
1: यही वास्ता सब चीज़ के ध्यान रखना चाहिए, और खाली आपने ने आजू बाजू सबके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अकलू भाई, हमारा स्वास्थ्य सही रहना बहुत ही आवश्यक है, और यह खराब तब हो जाता है जब हम इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, और इसके खराब होने के कई कारण हैं, जैसे कि आनुवंशिक समस्याएं तो होती है, दूषित पर्यावरण, असंतुलित खान पान, शारीरिक निष्क्रियता और तनावपूर्ण जीवन शैली।
1: हाँ।
0: और दूसरी तरफ वहीं नशे की आदतें भी इसमें बहुत ही शामिल है।
1: और देखो है बात तो बहुत अच्छा कह लो कि स्वास्थ्य जो है ओकरा बनाए कर रखना चाहिए, कि ना कि स्वास्थ्य पर ही सब कुछ निर्भर करे छे, सब कुछ पहलो भी जा सके छो कि छे कि ना।
0: बिल्कुल।
1: धन कमाए चाहे छो तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ना, कुछ अगर जीवन में लक्ष्य हासिल करे चाहे छो तो तोरा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य ही जे छे सर्वोत्तम धन छे। या वास्ते अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखो, और थोड़ा मोड़ा अगर बिगड़ गए तो ओकरा भी सुधारे के प्रयास करो।
0: अनुभव
1: होते कि ना तो अच्छा अच्छा खाना खाए करी का, पौष्टिक खाना खाए करी का, और जे छे नियमित व्यायाम करी करी का।
0: बिल्कुल। जहां तक असंतुलित खान पान का मतलब है अकलू भाई, भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, यदि हम इस प्रकार के तत्वों का ग्रहण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
1: आरु लाखो भाई, देखो कि प्रकृति ने भी समय समय पर हर मौसम में खाए जुकुर फल जे छे, सब्जी छे, अनाज छे, वो बनेलो छे, हमरा सनी के देलो छे, हमरा सनी के मौसमी फल सब्जी अनाज एकरो भी जे छे उपयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और अभी तो गर्मी का मौसम है, देखिए जितने भी फल बाजार में बिकते हैं वो ज्यादातर उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है।
1: गर्मी के मौसम में जो फल बिके चुकराम ना।
0: बिल्कुल। तो मौसमी फल सब्जियां जितने भी होते हैं उनका सेवन अवश्य करके हमें करनी चाहिए, और जंक फूड जैसे कि चीनी या वसा की अधिकता जिसमें हो, उससे क्या होता है कि मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और पाचन संबंधी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके होने के खतरे जो हैं काफी बढ़ जाते हैं।
1: गहर मतलब छे कि जंक फूड का कहो ना, और जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त भोजन छे ओकरा कहो हाँ।
0: बिल्कुल। और आज 7 जून है, और हर साल पूरे विश्व भर में आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है अकलू भाई।
1: दूषित भोजन आरु पानी से हुए वाला बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ावे आरु खाद्य सुरक्षा का प्राथमिकता दिए के वास्ते ही हर साल 7 जून यानी आज के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मने लो जाए छे लाखों भाई।
0: बिल्कुल। और इस वैश्विक अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है अकलू भाई, खाद्य जनित बीमारियों से बचाव, पहचान और उसके प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
1: साथ ही साथ एक मुख्य उद्देश्य यो चिलाखो भाई कि है सुनिश्चित करना कि खेत से लायकरी का थाली तक सभ्य का पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिला।
0: बिल्कुल। और इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 ईस्वी में घोषित किया गया था अकलू भाई, और इसे मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है।
1: हाँ।
0: और यह दिवस जैसा कि आपने बताया, खेत से लेकर थाली तक भोजन की शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देता है।
1: आरो साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा है सुनिश्चित करे छे कि सभ्य लोगों का जे छे हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक जे छे ओकरा भौतिक और आर्थिक पहुंच हुआ।
0: बिल्कुल। और दूषित भोजन खाने से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ते जा रहे हैं अकलू भाई, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 यानी कि अभी आज हम लोग जो मना रहे हैं, इसका एक मुख्य विषय है
1: कि
0: बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन।

0: हर जगह
1: सुरक्षित भोजन, और इस बात पर यह प्रकाश डालता है कि बीमारी, उसके बोझ और जान माल के नुकसान से संबंधित जो आंकड़े हैं और वो लक्षित हैं, और लागत प्रभावी समाधान की दिशा में कार्रवाई का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं, और असुरक्षित भोजन के कारण होने वाले जो वैश्विक स्वास्थ्य बोझ है उनको समझना और विज्ञान आधारित समाधान को लागू करना भी इनका उद्देश्य है। खाद्य जनित जो बीमारियां हैं वो अक्सर जीवाणु, विषाणु या परजीवी या रासायनिक पदार्थ के कारण होते हैं अगलो भाई, और इसलिए मानव स्वास्थ्य के लिए जो ये अदृश्य खतरे हैं। असुरक्षित भोजन का सबसे अधिक प्रभाव संवेदनशील समूह पर पड़ता है, और जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और महिलाएं और प्रवासी और संघर्षशील आबादी शामिल है।
0: तो एकरा वास्ते की करलो जाए लखो भाई?
1: दूषित भोजन से जो प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे बीमार हो रहे हैं और मृत्यु के साथ, यह दिवस इस वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और प्रथा को महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोग के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। इसका सीधा उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है अकलू भाई कि कोई भी व्यक्ति कभी भूखा ना रहे, और उसे स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो जरूरी पोषण है वह मिलता रहे।
0: और जना कि अभी बोलिए लो कि असुरक्षित भोजन नहीं करा, एकरा वास्ते सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लाखो भाई कि खाना खावे से पहना, यानी खाना खाए बैठी रहो जो ओकरा से पहना अपने जो हाथ गोड़ते हैं साफ करेला अच्छा से, ताकि अगर गंदा हाथों से खाना खाए बैठबो तो ओकरो द्वारा जे बैक्टीरिया हो जीवाणु हो वो हमरो सनी के शरीर के अंदर चली जाए और फैन हो जाए हम सनी बीमार हो जाए। तो सबसे पहलो बात है करना छे कि आपनो हाथ अच्छा तरीका से साफ करी कही खायला बैठना छे।
1: सिर्फ खाने की बात नहीं है अकलू भाई, साफ सफाई का ध्यान भोजन पकाने से पहले और बाद में भी अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। और रसोई में जितने भी बर्तन है उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए,
0: आरु जहाँ पर खायल बैठी रहो छो वो जगह साफ होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आरु जे भी खाए रहो छो ओकरा खाए के समय मजे छो एम ध्यान लगाए खा, कने जब जबकि तुम्हें ध्यान लगाए कर यानी खाना पर ध्यान लगाए कर खाना खेबो तो वो तोर शरीर में लागथौ वो फबथौ तोर शरीर का।
1: बिल्कुल
0: ना, आरो खा रहलो छो आरो सोच रहलो छो कुछ दूसरे चीज, तेना कि जे कभी कभी खाता खाता जी जे वो दाँतों से दबाए जाए छे तो ओकरा में जी कटी जाए छो, आरो अगर दूसरों तरफ ध्यान रहथौ तो ओकरा से हो जे भोजन के असर होना चाहिए शरीर पर वो भी कम हो छे। यह बस खाना खाए व्यक्ति खाना पर ही ध्यान लगाबो, आरो कभी कभी हो ना वो खाना खाता खाता देखो चावल में कंकड़ निकली जाए तो हाउ ध्यान रखबो तब ना कि है कंकड़ अभी लग रहा निकाल देना छे, लेकिन ध्यान तो रखबो तो दूसरा हैंड फिर कहाँ से खाएबो। तो यह बस खाना खाए व्यक्ति जैसे साफ सफाई के ध्यान तो रखो ही साथ ही साथ अपना ध्यान कभी खाना पर एकदम लगाओ, एकाग्रचित करके लगाओ ताकि वो खाना अच्छा सा, और जब खाना खाए बैठो तो पूरा पालथी मारी के बैठो खाना खाएला, और वो जैसे पूरा पांचों उंगली कौर बंधा करके मुंह में जाना चाहिए, तब ये जैसे खाना के जैसे अच्छा प्रभाव शरीर पर हो।
1: इतना ही नहीं, खाने की जो वस्तुएं होती है उसे कच्चा और पका हुआ दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, और भोजन अच्छी तरह से पकाएं कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उनमें जो सभी हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाए, और सुरक्षित पानी और साफ और ताजे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दैनिक आहार में सुरक्षित और पौष्टिक पदार्थों का सेवन तो करना ही चाहिए, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें, दूध जरूर सेवन करना चाहिए अकलो भाई। और साथ ही यह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर लोगों को भी साफ सफाई के बारे में जरूर हमें बतानी चाहिए, और अभी हम और हमारी आने वाली तभी जो हमारी पीढ़ियां होंगी वह भी स्वस्थ रह पाएंगी।
0: और देखो आज के हम सनी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे छे, एकरा एकरा मनावे के पीछे कुछ मुख्य कारण भी छे। जना कि सबसे बड़ो कारण छे बीमारी से बचाव होना चाहिए सभी भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेकरा WHO के नाम से भी जानलो जाय छे ओकरो अनुसार दूषित भोजन के सेवन से दुनिया भर में लाखों लोग हर साल अलग अलग बीमारी के जना कि दस्त हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गए, संक्रमण हो गए, एक तबियत बिगड़ी रो शिकार हो रो तो है दिन है सब बीमारी से बचाव के तरीका पर भी जोर दे कि केना हम असनी है सनी बीमारी से बचलो जा सको है भी सबका बतेलो जाए आज के दिन। और फिर दूसरों आरो कारण छे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल
0: है दिन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे में विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी ज्ञान के महत्व का उजागर करे छे ताकि भोजन का असुरक्षित हुए से रोकलो जावा सके छो, यानी कि भोजन जे छे उ असुरक्षित नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आरु आरु एकटा कारण छे सतत विकास के समर्थन, आज के दिन सतत विकास के समर्थन भी करलो जाय छे। सुरक्षित भोजन, सुरक्षित भोजन अच्छा स्वास्थ्य के नींव छके लाखो भाई जे आगो चली करी का बेहतर आजीविका, आर्थिक विकास और टिकाऊ कृषि प्रणाली में योगदान दे छे।
1: बिल्कुल
0: है हमरा सनी के सबका ध्यान रखना चाहिए कि जे हम सनी भोजन करे छे वो असुरक्षित भोजन नहीं होना चाहिए, वो पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, साफ सफाई के पूरा ध्यान रखना चाहिए, खाना बनाबे से लाइक करी का खाना खाए तक में, आरु तभी जे छे आज के दिन के जे सार्थकता छे लक्ष्य छे वो फलीभूत होते छे कि नहीं।
1: बिल्कुल। और अपने भोजन में जो प्रोटीन विटामिन फाइबर कैल्शियम होते हैं उनको शामिल भी करते रहें। आगे कार्यक्रमों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम आवश्यक है, इस विषय पर एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता के माध्यम से अपने श्रोताओं को विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जीवन में स्वस्थ रहे के वास्ते कई तरह के पोषक तत्व के जरूरत शरीर का पड़े छे। ओकरा में एक तत्व छे कैल्शियम। कैल्शियम का केना करी के हमरा सनी ग्रहण करा सके छे, एकरो कमी से शरीर के कौन अंग एकरा से प्रभावित होय छे, आ एकरो आपूर्ति हर उम्र में कैसे करके हो सके छे, ई बारे में जानकारी दे के वास्ते स्टूडियो में आमंत्रित छत डॉक्टर मृगेंद्र कुमार। डॉक्टर साहब अपना के स्वागत छे स्टूडियो में। ई बताइए कि अच्छा स्वास्थ्य के वास्ते कैल्शियम की कितना जरूरत छे शरीर का?
7: कैल्शियम के की आवश्यकता शरीर के स्केलेटल बोन के लिए
6: जी
7: अति आवश्यक है। करीब करीब 99% जो है कैल्शियम ही उसका कंसंट्रेशन रहता है, उसी से बोन का फॉर्मेशन होता है।
6: अच्छा अच्छा, हड्डी के निर्माण के वास्ते कैल्शियम बहुत जरूरी
7: है। बहुत जरूरी,
6: यानी बचपन से ही कैल्शियम की जरूरत शरीर का पड़े से। तो केना करी के करो आपूर्ति करे?
7: अब जैसे आपूर्ति करे के बात जब होते तो आपको जैसे नवजात से गर्भ धारण के ही समय से
6: गर्भवती माता का भी एक ध्यान
7: रखना पड़ेगा। जैसे गर्भवती माता को उस स्टेज में आप उनको कैल्शियम युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ेगी
6: जी,
7: जिससे कि बच्चे के स्केलेटल फॉर्मेशन में हड्डी बनने में ग्रोथ करने में उनकी जरूरत पड़ेगी, बच्चे में विकास होगा,
6: यानी शारीरिक ढांचा सही ढंग से निर्मित
7: होगा
6: जी।
7: तो उसके लिए माँ को सबसे अधिक सोर्स अगर देना है तो आप दूध उनको जरूर देना चाहिए डबल डोज में, पहले जितना वो लेती थी उनसे ज्यादा उनको देना
6: पड़े। 250 से 300 ग्राम के तक लगभग गर्भवती स्त्री का दूध पीना चाहिए।
7: और इसके बाद आप आफ्टर डिलीवरी,
6: अच्छा प्रसव के बाद,
7: प्रसव के बाद, प्रसव के समय में भी महिला को कैल्शियम की आवश्यकता होती है
6: जी,
7: क्योंकि उस समय जो है

0: मजबूत बनाना है, आकार देना है, तो उसके लिए माँ का दूध सबसे रिच डाइट है कैल्शियम के लिए। और वो बच्चा मान लिया जाए कि बच्चा वो दूध पी रहा है, कैल्शियम ले रहा है, एब्जॉर्प्शन की बात हो जाती है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है बच्चे को, तो इसके शरीर में नहीं जाने में बाध्यता होती है, तो उसको दूर करने के लिए एक विटामिन डी होता है जो आवश्यक है बच्चे के लिए। क्योंकि उसका रॉल क्या है कि विटामिन डी होने से वो आपके कैल्शियम जो भी भोजन के रूप में लिया जा रहा है स्रोत से, प्रकृति स्रोत से, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है।
1: अच्छा,
0: विटामिन डी। अब विटामिन डी लेने के लिए बच्चे को आप धूप में, मॉर्निंग वाला धूप में,
1: हाँ, सुबह के पहले धूप
0: देना चाहिए
1: जरूर,
0: ताकि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है
1: जी,
0: तो उस दूध से वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन 100% हो जाए, ताकि बच्चे के लिए विकास
1: अच्छा
0: में अच्छा होगा।
1: और जैसा जैसा कि उम्र बढ़े छे आदमी के, खास करके बच्चा के, जैसा शिशु के बात होले, अब शिशु जैसा जैसा बढ़े छे, पढ़े लिखे के वास्ते स्कूल जाए छे, वो उम्र में कैसे करके कैल्शियम की आपूर्ति होना चाहिए?
0: वो उम्र में जैसे कि डाइट से उसको कवर कीजिए, जैसे 6 महीना तो बच्चा माँ के दूध से ही वो काम उसका पूरी पूर्ति हो रही है, उसमें अन्य सब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और उसके पूर्ति से उसका एक और फंक्शन होता है कि बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है
1: जी,
0: रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है,
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता,
0: तो उसके लिए उससे जो बच्चे को बचा सकते हैं, अन्य रोगों से बचा सकते हैं। इसलिए ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ ऐसा होता है तो उनको केमिकल और अदर ड्रग की आवश्यकता नहीं होती है
1: जी।
0: फिर भी अगर जरूरी रहा तो डॉक्टर सलाह के अनुसार अपना देना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन डाइट करना चाहिए कि डाइट से ही और ये नियमित तरीके से जो फिजियोलॉजिकली किया जाए तो आवश्यकता नहीं होगी कोई,
1: यानी कुछ एक्सरसाइज व्यायाम के द्वारा,
0: व्यायाम के द्वारा जो वो चलना फिरना जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक टिश्यू एक्टिव नहीं होगा और उसमें ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं बढ़ेगा। कि कैल्शियम का रोल आपका सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू दोनों के लिए है।
1: अच्छा।
0: तो सॉफ्ट टिश्यू में जितने मसल्स हैं, ब्रेन का टिश्यू है, हार्ट का टिश्यू है, लंग्स का टिश्यू है, सबका विकास आपका एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी बढ़ेगी
1: जी,
0: तो वो बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ये डाइट से उस समय तो अब आ गया, फीडिंग के बाद दूध तो होगा ही, और उसके साथ साथ वो डाइट चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट, पानी जैसे होता है कि आपका झरना वाला पानी, झरना वाला पानी में होता है कि रॉक से टकरा के जो पानी आती है उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में रहता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इसीलिए उसका नाम भी दिया गया है कि कैल्शियम ड्रिंकिंग वाटर।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उसको
1: सेवन करना चाहिए,
0: उसको सेवन करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हर जगह तो ये शहरी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो ये सर्वे किया गया है, देखा गया है कि उस एरिया में इसके कमी से जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह लेडीज सब में जो होता है
1: बीमारी
0: वो सब आपको इसी से संबंधित है, कैल्शियम की ही कमी से
1: बीमारी
0: होता है।
1: अच्छा अच्छा, और जैसे कि उम्र जैसे जैसे बढ़े छे वैसे वैसे तो हड्डी कमजोर हो छे, और जो वगैरह में दर्द इस सब भी तकलीफ हो छे, तो एक से बचे के वास्ते भी कैल्शियम की जरूरत पड़े छे।
0: बिल्कुल,
1: तो एक आपूर्ति केना कर लो जाए?
0: खाद्य पदार्थ से सबसे रिच है छेना है, दूध है, अंडा है, जो शाकाहारी है उनको छोड़ के, तब चना है, जितना भी है सीरियल वगैरह उन सब में, ये बीन है बीज वाला जो सब्जी होता है उस सब में कैल्शियम आपको मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा।
1: तो कुछ मात्रा का भी ख्याल रखना पड़ता है भोजन में कैल्शियम के?

0: डिपेंड करता है कि आपको खाने का तरीका है वो, आप नियमित रूप से कैल्शियम डेली खाइए, क्योंकि डेली बोन को मेटाबॉलिज करना पड़ता है, हर टिश्यू को भी मेटाबॉलिज करना पड़ता है, उसमें उसकी जरूरत होती है, इसलिए डेली उसका एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का होना चाहिए, चाहे प्रकृति सोर्स से आए या मैन्युफैक्चरिंग सोर्स से आए, किसी भी सोर्स से होना चाहिए।
1: अच्छा, फल वगैरह के रूप में भी ले लो जब सके छे, या दूध
0: जी,
1: दही
0: दूध दही, दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसमें तो निश्चित यूज करना चाहिए।
1: आरो की विशेष बात का ख्याल रखना चाहिए, जिक्रस के शरीर सब दिन स्वस्थ और तंदुरुस्त बन लो रहे डॉक्टर साहब।
0: इसमें एक्सरसाइज सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है, एक्सरसाइज शिथिल मसल को भी एक्टिव आप कर सकते हैं, और एक्टिव करने के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज का कैपेसिटी बढ़ाते चले जाइए,
1: रोज के रोज,
0: रोज डेली का,
1: हाँ,
0: डेली
1: जीवन
0: मेरे
1: में,
0: जीवन में ये अपना लेना चाहिए कि हमको, जैसे आप घर में अपने अपने जॉब के हिसाब से लोग करेंगे,
1: जी
0: तो जॉब में जैसे घरेलू महिला हैं या ऑफिस वाले कोई हैं,
1: कामकाजी महिला होना
0: तो उन सब के लिए ये बहुत जरूरी होता है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज
1: जरूरी है।
0: जरूरी है।
1: तो जो घरेलू महिला है वो कैसा तरीका एक्सरसाइज करते कैल्शियम की आपूर्ति के लिए?
0: कैल्शियम की आपूर्ति के लिए वो अपना डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज जो होगा वो शरीर में तेल लगा लें, तेल लगाने के बाद एक्सरसाइज करें, धूप मॉर्निंग में
1: अच्छा,
0: धूप
1: पहले
0: में
1: धूप
0: 10 मिनट 15 मिनट, मौका तो उतना मिलेगा
1: जी
0: नहीं,
1: नहीं।
0: तो उन्हें डोमेस्टिक एक्सरसाइज ही से उनका पूरा पूर्ति हो जाता है, एक्सरसाइज का फंक्शन
1: यानी घरेलू कार्य के
0: तो
1: द्वारा एक
0: घरेलू
1: आपूर्ति
0: के,
1: करे के प्रयास
0: हाँ
1: हुआ।
0: घरेलू कार्य के साथ साथ सब काम हो जाता है, और ये कार्य ना समझ के इसको समझें कि हम स्वस्थ होने जा रहे हैं,
1: जी
0: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो कोई भी काम करें घरेलू, तो वो उसी दृष्टिकोण के हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और हम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं,
1: जी
0: उस ख्याल से वो अपना काम करेंगे तो घर का भी काम, मेंटल टेंशन दूर रहेगा,
1: यानी 10 मिनट भी लगभग जरूर करना
0: जरूर
1: चाहिए।
0: करना चाहिए, एक मान लेना चाहिए, तो उनको ये महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट जो समझ में आएगा कि ये जरूरी है लाइफ के लिए, तो वो 10 मिनट ही आप डेली आप देती हैं, तो बाकी काम तो 10 मिनट के बदले में ये तो रूटीन है,
1: जी
0: बाकी काम तो वो अपना जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज से पूरा कर लेंगे,
1: अच्छा
0: इसमें कोई
1: अच्छा
0: दिक्कत नहीं होने वाली है।
1: और जो कामकाजी महिला जी उनका स्नेह का कैसा की करल पड़ते?
0: उनको तो एक्सरसाइज में दूध का सेवन ज्यादा करें,
1: अच्छा,
0: दूध
1: दूध
0: दूध बहुत महत्वपूर्ण है,
1: कितना के मात्रा में लेना चाहिए? 40 से ऊपर के जो महिला से दूध कितना लेना चाहिए प्रतिदिन?
0: प्रतिदिन उनको 1 केजी के लगभग में 24 घंटा में
1: ले लेना चाहिए।
0: ले लेना चाहिए,
1: अच्छा, लेकिन पाचन
0: क्योंकि काहे
1: शक्ति,
0: कि होता है कि अधिक उम्र वाले को
1: जी
0: हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है,
1: अच्छा,
0: जिसके चलते मेनोपॉज वगैरह होता है, तो उस समय में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म घट जाता है, हार्मोन से जो रिलेटेड है
1: जी
0: मेटाबॉलिज्म घट जाता है, तो सेल का एक्टिविटी भी कम जाता है, तो उस समय कैल्शियम डिफिशियंसी होने का ज्यादा चांस है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये पहले से ही कैल्शियम रिलेटेड डाइट लें, और उससे भी अगर नहीं पूरा हो रहा है तो वो अपना ये करें कैल्शियम पूरक के रूप में
1: अच्छा,
0: मैन्युफैक्चरिंग कैल्शियम जरूर लें, उससे इनकी आपूर्ति हो जाएगी।
1: तो चलिए, है तो महिला के बारे हो ले, अब कुछ बुजुर्ग व्यक्ति के बारे बताइए, जब कि काम का से उनका मुक्ति मिली जाए छे तो शरीर एक तरह से शिथिल पड़ जाए छे, तो उनका शरीर में दर्द वगैरह जो हो छे, जोड़ के समस्या आवे छे, तो उनको वास्ते की उपाय छे?
0: उनके लिए भी है कि अपने ही टॉलरेंस के हिसाब से
1: जितना सह सके।
0: सह सके, बैठे हुए भी हैं तो पैर जोड़
1: जी
0: को एक्टिव रखें, बैठे बैठे ही हर जोड़ को मूवमेंट दें, बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हो सकता है, वो आराम से खाली मन में वो सोच लें, सोचिए हमको एक्सरसाइज बैठे बैठे भी होता है और चल के भी होता है, तो हम बैठे बैठे हमारी स्थिति अभी चलने लायक नहीं है, तो हम बैठ के ही अपना शारीरिक बेड पर ही बैठ के ही कुर्सी पर ही गर्दन को अपना स्लोली घुमाना, हर एक्टिविटी को जितने लाइफ में वो कर चुके हैं उसको वो दोहराते रहे,
1: तो एक से कैल्शियम की आपूर्ति होता रहता है और शारीरिक समस्या नहीं रहते, यानी कि अपना अपनो शरीर का हमेशा चालू रखने की कोशिश करिए, शिथिलता नहीं आवा देना
0: नहीं।
1: तो मसल्स भी एक मजबूत हो इससे
0: जरूर। आप ऐसे जनरल अपने को समझने के लिए
1: जी
0: एक्सरसाइज का महत्व क्या है
1: जी
0: और कैल्शियम का रोल इस पर क्या होता है कि आप भोजन पूरे शरीर में जा रहा है, दाहिना हाथ क्यों मजबूत होता है, बायां हाथ कमजोर होता है, वीक कुछ रहता है
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: दाहिना हाथ मजबूत होता है क्यों होता है,
1: कहना
0: इसलिए कि उसका दाहिना हाथ का उपयोग आप ज्यादा करते हैं, यूज ज्यादा करते हैं, ढेला भी फेंकना है दाहिना हाथ से, किसी से बचना भी है तो पहले दाहिना हाथ उठेगा
1: जी जी,
0: तो उसका रिफ्लेक्शन के चलते बराबर जो यूज होते रहता है इसलिए उस मसल में टोन आ जाता है,
1: अच्छा
0: इसलिए उसमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ जाती है उस समय, तो उस समय इसमें ये कैल्शियम का कवरेज जब बनेगा तो मसल में भी उसका रोल है, उसको भी मजबूती देना, हड्डी को भी हार्ट टिश्यू को भी मजबूत करना
1: जी,
0: यही कैल्शियम का महत्व है।
1: अच्छा और कुछ विशेष बात डॉक्टर साहब?
0: और एक चीज है कि कैल्शियम की पूर्ति से बहुत तरह बच्चे में भी बहुत तरह का होता है, रिकेट्स वगैरह, कुपोषण, ये सब कंबाइंड शिकायत है, ये सब होते रहता है, तो उसको ध्यान में रखें सभी लोग कि कहाँ पर क्या हो सकता है, जरा सा कुपोषित बच्चा हो या रिकेट्स वाली बात हो, हड्डी मुलायम होते जा रहा हो, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें कि बोन खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ड्यू टू कैल्शियम की डिफिशियंसी से
1: कमी से,
0: हाँ तो उस समय आपको पूरक के रूप में
1: आहार के रूप में
0: प्लस एक्स्ट्रा
1: दवाई के रूप में
0: कैल्शियम का प्रिपरेशन देना पड़ता है,
1: जगह उसके आपूर्ति हो जाए
0: और उनका जो, जो उसके डिफिशियंसी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में महिला वगैरह में ज्यादा देखा जाता है, कमर दर्द हो गया, कहना में दर्द हो गया में, तो एक पैर में भी दर्द होता है कभी कभी, पूरा एकदम कंप्लीट लाइक जब होता है
1: अच्छा।
0: तो मसल में वो पेन होना शुरू हो जाता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से
1: जी जी।
0: तो उसको उस बीमारी का नाम भी है टिटेनी कहते हैं उसको,
1: अच्छा टटोनी,
0: हाँ टिटेनी,
1: टिटेनी अच्छा बीमारी का नाम,
0: टिटेनी मतलब पूरा पैर जो अचानक क्रैम्पिंग पेन पैर में डेवलप कर
1: जाता,
0: बहुत सीवियर पेन होता है उस समय, तो वो चीज नहीं अटैक हो तो उसके लिए उसको जरूरी हो जाता है, ऐसे कैल्शियम का ब्लड लेवल में इन्वेस्टिगेशन से करा के देख लेते हैं हम लोग कि कमी है कि नहीं है, कमी है सफिशियंट है कि इनसफिशियंट है या स्टैंडर्ड में है, माइल्ड है मॉडरेट है, ये सब हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं, इसके बाद ही उनकी आपूर्ति की जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग से अलोंग विथ डाइट से,
1: अच्छा चाहे भोजन से हुआ या दवा से,
0: दवा से।
1: तो डॉक्टर साहब अच्छा स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम आवश्यक के विषय पर अपने इतना सुंदर जानकारी के लिए अपना को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल अकलू भाई, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में किन किन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर को हानि होती है,
3: तो ओकरा में सबसे ज्यादा जरूरी कैल्शियम भी है,
2: बिल्कुल
3: कैल्शियम से हड्डी मजबूत हो, जब हड्डिये मजबूत नहीं होता तो समझो है शरीर केना चलते,
2: अपना
3: हड्डी का मजबूत करे के वास्ते जे भी चीज है डॉक्टर साहब ने बतल के ओकरा ध्यान रखना छे, ओकरा पर अमल करना छे, छे कि नहीं,
2: बिल्कुल।
3: आरो चलो अब हम असनी थोड़ा सा गीत संगीत भी जरा सुनी लो जाए,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: चलो सुने छे विवेकानंद ठाकुर से है देवी गीत।

0: AIR at 90. हाँ गुल्लू भाई, हमारी स्थानीय संस्कृति जो होती है और प्रकृति या हमारी जीवन शैली, इनको विभिन्न रूपों से हम लोग बोल कर बताते हैं अपने श्रोताओं को, लेकिन कई ऐसे विधा होते हैं, गीत संगीत होते हैं, उनके माध्यम से भी इन पारंपरिक तरीकों को बताया जाता है, इनका इनके बारे में खुशी जताई जाती है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया जाता है।
1: समझीर लोचे लाखो भाई, तो राजे छो झूमर सुनेर मनहर लोचे।
0: बिल्कुल, तो झूमर भी इन्हीं विधाओं में आते हैं।
1: तो चलो बिना देर कर लो, सुनिए झूमर।

0: हाँ, इतना सुंदर झूमर है जो कि स्थानीय भाषाओं में गाए गए थे विवेकानंद ठाकुर द्वारा।
1: देखो गीत संगीत तो होबे करे छे कि सुनी करी का मन झूमा लागे छे,
0: बिल्कुल
1: और मन तभी झूमता हो जब कि तुम तो खुश रहो। तो
0: बिल्कुल
1: खुश रहे के कोशिश हमेशा करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: अब अगर हम असली अपने किसान भाई की बात करिए तो उन्हें कब खुश हो छे जब कि खेत में फसल लहलहावे छे
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल
1: और कभी कभी वैनो ही फसल लगावे छे जकरा से कि 2 पैसा उनका हाथों में आवे छे। तो
0: बिल्कुल
1: एनाम देखो बहुत प्रकार के खेती करे छे हुनी। तो हरी खाद के वास्ता ढैचा भी एक अच्छा खेती करे के माध्यम छे। तो
0: बिल्कुल
1: ढैचा
0: बिल्कुल
1: के अगर खेती कर लो जाए ओकरा से हरा खाद बने छे। तो लेकिन हाय केना कर लो जाए हाय सबसे बड़ा समस्या हो जाए छे। तो
0: बिल्कुल
1: यही समस्या के निदान वास्ता आजकनी अपनो जे छे अपनो सनी के बीच छे चंद्रशेखर सिंह जी, आज इनका से भेंट करलो छे राम बालक प्रसाद जी। आए पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता के माध्यम से जाने छे हरी खाद के लिए ढैंचा की खेती विषय पर विस्तार से।
2: किसान भाइयों, हम अपने दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी में भागलपुर जिले के कृषि पदाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह साहब को आमंत्रित किए हैं और इनसे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हरी खाद के संबंध में। तो सबसे पहले हम चंद्रशेखर साहब, जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर को हम नमस्कार बोलते हैं।
3: नमस्कार
2: सर, आप पहले बताइए कि हरी खाद क्या है।
3: हरी खाद जैविक खाद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवयव है। हरी खाद के उपयोग का मुख्य उद्देश्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करना एवं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है। सघन कृषि पद्धति तथा असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों के कारण दिन प्रतिदिन मिट्टी की उर्वरता में ह्रास हो रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके कारण पौधे मिट्टी में उपस्थित सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। हरी खाद न केवल सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वरना मिट्टी में हार्मोन तथा विटामिन की मात्रा को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ खरपतवार की वृद्धि को भी रोकता है। दलहनी तथा गैर दलहनी फसलों को उनके वानस्पतिक वृद्धि काल में उपयुक्त समय पर मृदा उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जुताई करके मिट्टी में अपघटन के लिए दबाना ही हरी खाद कहलाता है।
2: सर, आपने तो किसानों को बता दिया कि हरी खाद क्या है। सर, हम आपसे और हम आकाशवाणी के माध्यम से हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि हरी खाद से उन्हें क्या लाभ है और इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
3: हरी खाद की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कम समय में ज़्यादा बायोमास मृदा को प्राप्त होता है। दूसरा लाभ ये है कि रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते हुए खर्च को हम लोग रासायनिक

कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, घड़ी में संध्या के 7 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा, विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा, भाजपा के लिए उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है।
1: हाँ हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं भाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता कहे, लेकिन गठबंधन के भी नेता हमें तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबके बैठक बुलाए हैं। शाम को हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे, क्लियर है दोनों सीटें हम जीतेंगे।
0: इधर भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही ने दावा किया कि राज्यसभा की दूसरी सीट उनकी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।
2: मंत्री संपर्क में, आप विधायक के बात बोलते हैं, दो तीन को मंत्री का नाम हम बता देंगे जो हम लोगों से संपर्क में। तो हेमंत जी को भी सलाह देता हूँ मित्रवत कि भाई बच जाओ, नहीं तो ये काला नाग ऐसा डसेगा ना कि कहीं के लायक नहीं रहोगे। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि झारखंड के चारों तरफ कमल खिल गया है, झारखंड में कमल खिलाना बाकी।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। पत्रकारों से बातचीत में आज श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेगी भी।
3: रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, उसके लिए मुझे संकल्पित होना था। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे।
0: इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं।
4: राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रवास में है और निश्चित रूप से संगठन को, कार्यकर्ताओं को और युवा कार्यकर्ताओं को काफ़ी प्रेरणा मिल रहा है। काफ़ी उत्साहित है कार्यकर्ता और आने वाले दिनों में उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से झारखंड के भविष्य के प्रति अपना योगदान और अच्छे ढंग से हो सकेगा।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत महागामा में कांग्रेस के

0: एल ए एवं कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मतदाता सूची के सत्यापन में जुटे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि BLO के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए MBA और BBA पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। MBA के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा BBA के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @handle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इससे गरीबों का जीवन प्रभावित होगा।
2: क्या बढ़ जाएगा पेट्रोल गैस का दाम, LPG का दाम, जबकि क्रूड ऑयल नीचे की ओर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं, उसके बावजूद बढ़ोतरी है। तो पूछिए जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, गरीबों का खून चूसने पर आमादा है, दो चार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनका कर्ज माफ कर रहे हैं।
0: इधर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले अभी भी भारत में घरेलू गैस काफी कम कीमत पर मिल रही है।
3: उनको एक LPG घरेलू उपभोक्ता को बेचने में 870 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है। तो एक छोटी सी कोशिश है इस भरपाई को करने की, क्योंकि इकोनॉमी पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगल बगल के देशों में, महाशक्तियों में भी, जहां अभी गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, हमने बहुत मामूली बढ़ोतरी की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां बेहतर होंगी, हम ये जो है प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी।
0: खूंटी जिले के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। संभावना जताई जा रही है कि 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षु अनूप ने सभी मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतते हुए खिताब अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत, कहा भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन, हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना, मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत कार्यक्रम के कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए शिव भजन से।

इस शिव भजन के साथ ही संपन्न होता है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत के कलाकार थे बासुकी प्रसाद यादव। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। गढ़ में संध्या के 7:25 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं अपने पटना केंद्र के कार्यक्रम में।

0: लगती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
8: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
7: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठा

0: घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं।
1: ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति है पूरे, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, यह हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है।
0: इधर सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। वहीं प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आलोक सिंह ने कहा कि वे संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे।
3: देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उन्होंने निर्वहन दिया है उसको निष्ठापूर्वक हम लोग निर्वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पार्टी का भी संगठन का चुनाव हुआ, 22 लाख से ऊपर हम लोग के सक्रिय सदस्य बने, इसको और आगे लेके जाएंगे हम लोग।
0: इधर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन 13 जून को नई दिल्ली में होगा। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस महाधिवेशन के दौरान पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होगा।
3: हाँ, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी 13 जून को। उस दिन भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बिहार से भी और दूसरी जगह से लोग आएंगे, वहां भी कार्यक्रम होगा।
0: अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने आज पटना के एक चर्चित निजी कोचिंग संस्थान की जांच की। जांच के दौरान संस्थान में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं पाई गई। अग्निशमन विभाग के सहायक जिला फायर ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस संस्थान को कमियों को ठीक करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
4: जो भी कमियां पाई गई है उनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा इस सप्ताह के अंदर, जो एक सप्ताह का सारा जो फायर सिस्टम सेफ्टी सिस्टम कमियां पाई गई है जो उनको लगाना है, उनके बाद यदि सारा सिस्टम लगा दे फिर उनको फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाएगा। फुलफिल यदि जो टाइम बॉन्ड उनको दिया जाएगा, टाइम बॉन्ड के अंदर यदि फुलफिल कर लेते हैं तो फिर कार्रवाई कोई सवाल ही नहीं होता। सभी कोचिंग का जाँच किया जा रहा है, सभी कोचिंग को ऑडिट किया जाएगा।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश पुनर्परीक्षा नीट 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को लाइव कर दिया है। उम्मीदवार अब इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया था। अब नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 जून को देश भर में किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
8: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। श्री मोदी लंबे समय तक लगातार पीएम पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4,399 दिनों का हो जाएगा, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दायित्व को लगातार 4,300

0: 98 दिनों तक संभाला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है।
1: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा नेहरू जी से भी आगे रहा, लेकिन अंतर रहा। नेहरू जी के कार्यकाल में घोटालों का आरोप शुरू हो गया था। मोदी जी के 25 साल चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहते हुए कोई कह नहीं सकता कहीं एक दाग लगा हो। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से देश को आज यहाँ तक ले जाने का काम किया।
0: विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक कल नई दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे। इधर एनडीए के घटक दलों ने इंडी गठबंधन की बैठक की आलोचना की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है।
2: इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन है।
0: वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है, इस गठबंधन को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है।
3: आपस में भगदर है उन लोगों में, सिर्फ उटअल है, भगदर मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है। और एनडीए तो एकजुट है, तो उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उटअल है, वही जाने।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। पंकज कुमार गुप्ता ने एनटीपीसी कांटी के परियोजना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता और सुरक्षा के उत्तम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। एनटीपीसी कांटी परिवार ने श्री गुप्ता के सफल और प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
4: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के समीप NH 120 पर आज 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब कारोबारी ने हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइकिल ऑन संडे अभियान के तहत आज पटना के इनकम टैक्स चौराहा से पटना जू तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली को पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन

0: की अंतिम तारीख कल, 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान। इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
7: आकाशवाणी।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
9: राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला प्राधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा, लोक सेवाओं तथा अन्य जनहित से जुड़े कुल 48 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक मामले का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। युवा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद कंपनियों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिला निबंधन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार मेले में साक्षात्कार के उपरांत 70 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार पाने का अवसर मिलता है और उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इधर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, नियमित व्यायाम के प्रति लोगों को जागरूकता करने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को जिले भर में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 6 बजे गांधी स्टेडियम से साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। यह रैली गांधी स्टेडियम से निकलकर मेन रोड होते हुए जीडी कॉलेज मार्ग, हर हर महादेव चौक एवं ट्रैफिक चौक से होकर पुनः गांधी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में जिला प्रशासन के कई अधिकारी, युवा, छात्र छात्राएं तथा खेल से जुड़े युवाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
10: लगभग 5 किलोमीटर की साइकिल रैली की है और यह दिखाने के लोग जागरूक करने के लिए कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी प्लस ईंधन बचाने के लिए भी नई साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचता है। इसलिए हमें छोटे मोटे कार्यों के लिए या छोटे मोटे लघुन पर जाने के लिए अगर हम साइकिल का उपयोग करें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और सरकार के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा।
9: भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए बेगूसराय के सदर अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के बेहतर उपचार एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष लू वार्ड की स्थापना की गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा 10 बेड का यह अलग वार्ड तैयार किया गया है जिसमें लू से प्रभावित मरीजों के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसमें ORS, IV फ्लू, आवश्यक दवाइयां तथा आपातकालीन उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि मरीज को तुरंत एवं प्रभावी उपचार मिल सके। इसके लिए साथ ही मरीजों की सतत देखभाल एवं उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है। यह टीम लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर रखेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि लू से प्रभावित मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बीते दिनों जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में मटिहानी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया गांव सिंहपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू सेवन और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में सभी उपस्थित लोगों को तंबाकू एवं धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। IMA बेगूसराय के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशा मुक्त जीवन शैली अपनानी होगी। बेगूसराय जिले में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन की ओर से बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जिसके पश्चात पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
8: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
11: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में संध्या के 7:52 हुए हैं। प्रस्तुत है सुरलहरी कार्यक्रम। आज सुरलहरी कार्यक्रम के कलाकार हैं विजय कुमार दास। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए इस कबीर दास रचित भजन से।

इस भजन के साथ ही संपन्न होता है सुरलहरी कार्यक्रम। आज सुरलहरी के कलाकार थे विजय कुमार दास। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है रजनीगंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म आज और कल से।

आज और कल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आखिर क्यों से।

लता मंगेशकर के स्वर में आप अभी सुन रहे थे आखिर क्यों फिल्म का गीत। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों के सुर में। फिल्म है बैजू बावरा।

आप सुन रहे हैं रजनीगंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं रजनीगंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम का

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म

0: बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: आप सुन रहे हैं रजनीगंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म है दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी के सर में प्रस्तुत है ये गीत। गीतकार हैं साहिर, संगीतकार मदन मोहन और फिल्म है गज़ल।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर के स्वर में, फिल्म है निकाह।
1: अलविदा मत कहो।

0: Jaya Bharti. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
3: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
3: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331481। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और

0: And wider West Asia. What began with U.S. and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increasing pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to raise oil production in July as the United States and Iran struggle to reach an agreement to end the war. According to the cartel's statement released after its virtual meeting today, the seven OPEC Plus countries, which include Saudi Arabia, Russia, Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, and Oman, have agreed to increase oil output targets by about 1,88,000 barrels per day next month. This is the fourth increase amid the West Asia crisis. The war, which began after U.S.-Israeli strikes on Iran on the 28th of February this year, has cut oil flows through the Strait of Hormuz, creating the world's biggest ever supply crisis. U.S. President Donald Trump said he will not unfreeze Iranian assets or lift sanctions before a peace agreement is reached with Tehran. In an interview with a news channel, Mr. Trump said such measures would only be considered after a deal is finalized. Commenting on Iran's nuclear program, he said that if an agreement is reached with Iran, the United States would oversee the removal and destruction of Iran's nuclear-related equipment.
1: If we make a deal, that now we're friendly, we'll all go together. It'll be our equipment. We'll take it out and destroy it, whether it's on site or whether we take it off site. Well, that will require we will have a deal. We'll be friendly. In other words, we will have made a deal and we will be at peace and we will go with them or without them, but we won't have people shooting at us, okay? Now, if we don't make a deal, then we're going to take them out militarily very harshly.
0: Indian wrestlers continued their impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning two gold and two bronze medals in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61-kilogram category, defeating Kazakhstan's Asil Aytekin 6-0 in the final. Dinesh struck gold, beating Kazakhstan's Yedige Kasimbev 2-0 in the 125-kilogram final. Meanwhile, Mohit Kumar secured a bronze medal in the 65-kilogram category after registering a commanding 17-6 victory over Kazakhstan's Ozimzan Dastanbek. In the 97-kilogram category, Vicky bagged bronze, defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single title clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing fourth Grand Slam final of his career, while 10-seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government launched today the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियांग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी के हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फ़रोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और अवाम से अवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने अज़्म की तौसीख की। डॉक्टर जयशंकर और जनाब सुगियोनो ने बाहमी ताल्लुकात में फरोग का खैर मकदम भी किया। जनाब जयशंकर ने अपने इफ्तिताही बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन 4 साल की मुद्दत के बाद तलब किया गया है और ये ज़रूरी है कि इस मुद्दत के दौरान बाहमी ताल्लुकात में रुनुमा होने वाली अहम पेशरफ्तों का एतराफ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया में पिछले साल बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल का जश्न मनाया था। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को अक़्वाम मुत्तहदा का इस साल का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह एजाज़ मेजर बराक की मिसाली खिदमात और अक़्वाम मुत्तहदा की क़याम अमन की कोशिशों में भारत की तवील मुद्दत से जारी खिदमात का एतराफ़ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिका बराक की हुसूलियाबी बेशुमार नौजवान भारतीयों, बिलखसूस मुल्क की बेटियों के लिए एक तहरीक है जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खिदमत की तरगीब दिलाई है। मेजर बराक फिलवक्त लिबनान में अक़्वाम मुत्तहदा के क़याम अमन के मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्हें जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क में मुनक़िदा एक तकरीब में अक़्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस एजाज से नवाजा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 12 बरस में भारत को उमंगों से भरा एक मुल्क बना दिया है जो मौाक़े, इख्तराआत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुक्मरानी में इस्लाहात, तकनीकी सहूलियात के आम होने और शहरी मरकूज पॉलिसियों ने बुनियादी तौर पर मुल्क के अवाम के अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को देखने के नज़रिए को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत खलाई मईशत, جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے، توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑن

0: शुमाली मगरबी बंगाल के कुछ और हिस्सों, पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। उसने कल साहिली कर्नाटक, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दराज मकाम पर तेज और इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से मोतदिल बारिश हुई। इस बारिश से शहर के बाशिंदों को गर्मी और हब्स से कुछ राहत मिली। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश आज रत्नागिरी जिले तक पहुंच गई है। जिले के राजापुर तालुका में आज सपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारत की खवातीन फुटबॉल टीम को मुबारकबाद दी है। भारत ने गोवा के मडगांव में कल हुए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त दी और छठी मर्तबा ये खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों ने गैर मामूली कारकर्दगी, जोश जज्बा और टीम वर्क का मुजाहरा किया। नायब सदर ने अपने पैगाम में कहा कि ये कामयाबी फुटबॉल में खवातीन की बढ़ती हुई कुव्वत की मजहर है और ये पूरे मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए तहरीक का बायस बनेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मंगोलिया के उलान बातर ओपन में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपनी मुतासिर कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते। 61 किलोग्राम के जुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के एसाइल को फाइनल में 0 के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। दिनेश ने 125 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के कासिम बेग को 0 के मुकाबले 2 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के दास्तान बेग को 6 के मुकाबले 17 से हराया। 57 किलोग्राम के जुमरे में विकी ने मंगोलिया के गान बाटर को 0 के मुकाबले 4 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा हासिल किया। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी एक ऑफ टेस्ट में मैच के दूसरे दिन आज अफगानिस्तान की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। वह अब भी भारत के स्कोर से 451 रन से पीछे हैं। भारत की तरफ से पहली बार खेलते हुए मानसूथर ने 3 विकेट जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए। भारत ने दिन में अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया। कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन जबकि केएल राहुल ने 100 रन बनाए। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों ने 81-81 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से सलीम सैफी 6 विकेट हासिल करके नुमाया गेंदबाज रहे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 70वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि यह तहरीक बन गई है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, कर्सियोंग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सयाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती, मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के दो और कांसे के दो तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलब्ध

पक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुमित टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
5: Gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां। लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
7: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ

0: आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 2400 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात ये थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
2: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
5: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
1: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
2: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी। हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला। और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देके उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। SMS का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग SMS करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब SMS को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पे बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास SMS या फोन आ जाते थे और ये वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
2: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
1: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के कुआलालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को

0: अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआत ही क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500-500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। कि खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज हैं। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जब भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा

0: आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
0: श्री एम वी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में ही पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एन सी एच कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri M. S. N. Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N. C. H. Krishnamacharyulu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M. S. N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M. S. N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M. S. N. Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M. S. N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: Vidwan Sri M. S. N. Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain। अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री एम एस एन मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by विद्वान श्री MSN मूर्ति। He was accompanied by विद्वान Dr. वंकायला वेंकट रमण मूर्ति on the मृदंगम and on the घटम by विद्वान श्री M हरिबाबू। Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।